नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और

0: दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार सुनुले आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी बारीपदा आरंभ करुछु। आज भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। प्रथम शिल्पी सुभाष दास, कंठरे पुरातन रचना।

0: ले जमीर सूक्ष्म परिवेश को परिवर्तन करंतु जेपरि क्रमागत भाबे माटी ओदा ओ सुखिला रहिबो जमीरे अधिक समय पर्यंत ठिया पानी न रहिबा दरकार एहा परे जदि पोक देखा जांती तेबे एकर पिछा ट्राई प्लुमेजो पाइदिन 10% एसी 94.5 मिलीलीटर किंबा पाइमेट्रोजिन 85% डब्ल्यूजी 120 ग्राम किंबा 60 रु 80 ग्राम डायनोटिफ्यूरान 20% एसजी किंबा 200 रु 300 मिलीलीटर इथोफेनोप्रॉक्स 10% एसी किंबा 400 ग्राम एसी फेट 75% एसपी किंबा 400 रु 600 मिलीलीटर फिप्रोनिल 5% एसी 200 लीटर पानी रे मिसाई प्रयोग करंतु
1: ଶୁଣିଲେ କୃଷି ସୂଚନା ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ପାଣିପାଗର ଭାବି ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରଣପୁରପୁର ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିପାରେ ଶୁଣିଲେ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ 6:55 ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः अथ वार्ताः भोपालनगरे समनुष्ठिते राज्यस्तरीय गोपालक सम्मेलने जनान् सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रावोचत् यत् भारतीय न्यायसंहितायाः निरवशेष प्रवर्तने सति भारतस्य दण्ड न्यायप्रणाली जगति निरतिशय अर्वाचीना सम्भविष्यति गृहमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अस्याः न्यायसंहितायाः पूर्णसञ्चारानन्तरम् अभियोगपञ्जीकरणादारभ्य सर्वोच्च न्यायाधिकरणं यावत् सर्वेषां न्यायव्यवहाराणाम् अन्तिमनिर्णयः वर्षत्रयाभ्यन्तरे एव सिद्धिमिष्यति केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयान्तर्गत उच्च शिक्षा विभागेन असमिया बंगला मराठी पाली प्राकृत इति पञ्चशास्त्रीय भाषाणाम् अध्ययनाय पञ्च उत्कृष्ट केन्द्राणि अङ्गीकृतानि एतेन उपक्रमेण एतासां शास्त्रीय भाषाणां भाषिक साहित्यिक न्यासस्य संरक्षणाय संगणकीयकरणाय उच्च शैक्षणिक अनुसंधानाय ज्ञानस्य च व्यापक प्रचाराय समर्पित संस्थागत सहयोगः लप्स्यते एकोनविंशतितमः प्रवासी भारतीय दिवस समारोहः आगामी वर्षस्य जनवरी मासस्य सप्तमदिनाङ्कात् नवमदिनाङ्कं यावत् पश्चिमबङ्गराज्यस्य कोलकातानगरे समायोजयिष्यते अस्य महाधिवेशनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विधास्यति तत्र हि राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू समापनसत्रे अध्यक्षतां वहन्ति प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारान् प्रदास्यति सम्प्रति एषः कार्यक्रमः आकाशवाणीतः प्रसार्यते
3: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु यूट्यूब मञ्चे च न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु
2: लोकसभाध्यक्षेण ओम बिरला इत्यनेन मन्त्रालयानुगुणं विभिन्नानां संसदीय समितीनां पुनर्निर्माणं विहितम् भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब वित्त समित्या कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश कार्य समित्या सुधीर गुप्ता च रेल समित्या अध्यक्षत्वेन नियुक्ता तथैव चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन खाद्य प्रसंस्करण समित्या राधामोहन सिंह रक्षा समित्या राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समित्या सप्तगिरी उल्का ग्रामीण विकास पंचायती राज समित्या निशिकांत दुबे च संचार सूचना प्रौद्योगिकी समित्या अध्यक्ष पदम अलंकरिष्यन्ति अद्य नवदेहल्यां पंचम कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनं संबोधयन्ती वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन न्यगादीत यत् गत दशके वित्तीय संयमस्य आधारभूत संरचना निवेशस्य बैंकिंग परिष्काराणां वस्तु सेवा करस्य अथ श्रम संहितानां सुदृढ क्रियान्वयनेन भारतस्य आर्थिक स्थैर्यं अतीव सुदृढ

0: ଗୀତିକାର ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନାରୁ ଆଲବମ୍ ଗୀତଟିଏ ଗାଇଥିଲେ ଶିଳ୍ପୀ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର। ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା, ସମୟ ସକାଳ 8ଟା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल सदन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटल संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
4: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
5: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी

0: दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
2: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए

0: तैयार है। यह बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन फाइव के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी, दैनिक जागरण की सुर्खी है। स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है झिलमिल रोशनी झूलों की रफ्तार डोल मेले में उमड़ रहा हड़ौती।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया बंगाली मराठी पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का

0: विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार प्रभात सुनिले आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी बारीपदा। समय सकाळ 8:15 अल्प क्षण मध्ये आरंभ करुछु हेलो बारीपदा। कार्यक्रमटिकु उपस्थापना करुछन्ति अशोक कुमार दत्त।
2: चासी भाई ओ भोनी मानंक पई जरूरी सूचना। राज्यर समस्त पैक्स लैम्स एवं खुचरा विक्रय केन्द्रगुडी करे यूरिया डीएपी एमओपी समेत समस्त प्रकार सार पर्याप्त परिमाण रे महजूद रहिछि। राज्य रे सारर कोनोसी अभाव नाही, तेनु अजथा भयभीत न होई किंबा आगुआ अधिक सार महजूद न करी केवल फसलर वर्तमान रा आवश्यकता अनुजाई सार क्रय करंतु। एथिपई निज आधार कार्ड देखाई पीओएस मेसिन माध्यम रे सरकारी धार्य मूल्य रे सार क्रय करंतु एवं निश्चित भाबे रसीद संग्रह करंतु। गुजबरे विश्वास करंतु नाही, सार कलाबजारी को रोकंतु। मा माटीर सुरक्षा पई जैविक सार प्रयोग करिबा पई भूलंतु नाही। कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिसा सरकार।
3: हाँ भाई क्या रे चालो हो
4: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो।
3: ओहो माने कथा ना टिके फिटेई के कुहो।
4: माने सिनी आ उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन, उषा रो सिलाई मशीन, टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स, होंडा कंपनी रो पंप सेट, जेट समरसिबल मोनोब्लॉक आ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट, पावर विडर घास कटा यंत्र, पेट्रोल डीजल किरोसिनी पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेट सब रकम सुविधा मिलुची।
3: केठे मिलुची हो एते सुविधा
4: जानिन कि बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
5: ठिकना होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनकुनिया छक बारीपदा।
3: ताला जीबा ना की कहू छ
4: चलो।
2: चासी भाई ओ भोनी मानंक पई जरूरी सूचना। राज्यर समस्त पैक्स लैम्स एवं खुचरा विक्रय केन्द्रगुडी करे यूरिया डीएपी एमओपी समेत समस्त प्रकार सार पर्याप्त परिमाण रे महजूद रहिछि। राज्य रे सारर कोनोसी अभाव नाही, तेनु अजथा भयभीत न होई किंबा आगुआ अधिक सार महजूद न करी केवल फसलर वर्तमान रा आवश्यकता अनुजाई सार क्रय करंतु। एथिपई निज आधार कार्ड देखाई पीओएस मेसिन माध्यम रे सरकारी धार्य मूल्य रे सार क्रय करंतु एवं निश्चित भाबे रसीद संग्रह करंतु। गुजबरे विश्वास करंतु नाही, सार कलाबजारी को रोकंतु। मा माटीर सुरक्षा पई जैविक सार प्रयोग करिबा पई भूलंतु नाही। कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिसा सरकार।
6: भाई ए महंगा जोगो को इलेक्ट्रिक बिल भारी टेंशन दउची।
7: काई तू जानिनु सरकारक पीएम सूर्य घर यूएलए मॉडल रे बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति मात्र 5000 टंका रे। 1 किलोवाट घर उपभोक्ता मात्र 5000 टंका रे छात उपरे सोलर व्यवस्था करी वर्षक 5000 टंका जाय संचय करि परिबे। तो आउ डेरी काहे की, अधिक जानिबा पई टीपीएनओडीएल ऑफिस नहले ग्राहक सेवा नंबर 1800-3456-718 किंबा 1912 रे जोगाजोग कर।
2: चासी भाई ओ भोनी मानक पई जरूरी सूचना। राज्यर समस्त पैक्स लैम्स एवं खुचरा विक्रय केन्द्रगुडी करे यूरिया डीएपी एमओपी समेत समस्त प्रकार सार पर्याप्त परिमाण रे महजूद रहिछि। राज्य रे सारर कोनोसी अभाव नाही, तेनु अजथा भयभीत न होई किंबा आगुआ अधिक सार महजूद न करी केवल फसलर वर्तमान रा आवश्यकता अनुजाई सार क्रय करंतु। एथिपई निज आधार कार्ड देखाई पीओएस मेसिन माध्यम रे सरकारी धार्य मूल्य रे सार क्रय करंतु एवं निश्चित भाबे रसीद संग्रह करंतु। गुजबरे विश्वास करंतु नाही, सार कलाबजारी को रोकंतु। मा माटीर सुरक्षा पई जैविक सार प्रयोग करिबा पई भूलंतु नाही। कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिसा सरकार।
8: सदांक हृदयर स्वर मनबिणार झंकार हेलो बारीपदा। हेलो।

आकाशवाणी बारिपदार विशेष फोन इन कार्यक्रम हेलो बारिपदा परिसर को आपण मानको स्वागत करुछु। श्रोता बंधु नमस्कार, आसंतु आज जे माने फोन करुछंती तांको सहित कथा हबा आउ अनुरोध रो गीत सुनिबा।

0: माँ को भक्ति कले शांति मिले आओ मन दुख पीड़ा सब दूर
1: है। जब भी हम लोग कुछ लेके आते हैं भगवान के सामने लगता अपना पूरा होता है, इसलिए तो हम लोग भगवान के आगे आते हैं ना।
0: माँ बोली तो जिनस गोटे अच्छा ना आज्ञा ना श्रद्धा कमी हम हजार हजार लोक किए आश्चय माँ को किसी शक्ति अच्छी
2: निष्ठा भक्ति कहजुगे दरकार ना हेनी ए संसार समस्त पाप कर किसी तो पुण्य अर्जन करा दरकार आम जेनेसन केवे सब नहीं से रकिंग म्यूजिक रे ही दिन चल जाए कितु आम मान जी आम जी झील पिला आम जन माँ हम जन बो हूँ जो वाइफ हूँ आम जो ये सब रुचि रही आग जाए शिखेबू कौन जीवन तक ही विश्वास कर कहना किए आरंभ सी ही शेष से न चाहिए किसी हेनी मो जहाँ मागि डेरी हो कि मिली आज मिले कल न मिले पर निश्चय मिले
3: माँ महिमा एत जे पाखु आज्ञा न मिले द्वितीय श्रीक्षेत्र रथटना भी बंद रहे बह व्रत किंवा जेकोसी शुभ कम
4: बारिपदार अवधिष्ठा देवी हेतु प्रत्येक कार्य अंबिका ठाकुर पूजा लोक लड़ती जगन्नाथ महाप्रभु पूजा पाई बाहर जिता हुए जगन्नाथ बाहर से अंबिका मंदिर पाखु आस पा जाए इंद्रोत्सव में माँ को खड़ग जाए प्रतिनिधि हिसाब से पूजा हुए इंद्रध्वज पाखे और रथ बेले पुरी में प्रजा छेरापहड़ा प्रसिद्ध बारिपदा जगन्नाथ अंबिका ठाकुर दासी सहित पूजक खड़ग नहीं गली रथ प्रतिष्ठा हुए रथ प्रतिष्ठा पर ठाकुर रथ को उठा
5: आगर एपिठे पशु बड़ी पड़ुता बेले आजिकल बड़ी को बंद रखा जाए केवल अर्पण ही करा
6: आगर बहुत पशु बड़ी दिखाला सब दिन बड़ी लगुला एवं पशु बड़ी बंद करागला पशु बड़ी बंद होती केवल उत्सव कर
3: माँ दर्शन पर प्रत्येक दिन हजार हजार भक्तों समागम होता है माँ को संतुष्ट करने तथा पूजार्चना व्यवहृत पूजा सामग्री भोग एवं फूल मंदिर प्रांगण में विभिन्न दुकान मिली था
0: बाहर नहीं आगे कितना मूल दुकान प्रथम ये सब गुआ तैयारी बाहर से तेल रिफाइन सब यूज
5: कहुए घी दीप मंदार फूल आउ बेलपत्र अति प्रिय
3: माँ अंबिका प्रत्येक सत्व जमी मयूरभर गोड़ी माटी सहित मिसी जा विपद पड़े केवल थरटे माँ बोली डाकिले अंबिका माँ ताक बाट कढ़ाई नहीं था
0: माँ जानी धरी पुओ जमी चले आम सी
7: पिला बुली देह पा खराब है माँ को डाकने माँ शुणी
8: माँ को पाखु मु सब पाई आध्यात्मिक जगत में भगवान को दर्शन करवा केवल माँ को क्षमता अच्छी बापा पाखे पहुंचेवा आउ कहारी क्षमता ना
5: शारदीय दुर्गा पूजा उत्सव में षोह दिन धरी अत्यंत निष्ठार सहित माँ पूजार्चना करा था ए उत्सव को देखा राज्य राज्य बाहर प्रत्यह भक्तों समावेश लगि रही है
9: षोड़श उपचार पूजा हुए षोह दिन
0: पुओ जिते जुआड़े कम करू जहाँ करू टे जा घर को फेरी जा माँ दर्शन टा करदे माँ कानी टे मुहटा फुचिदे जो आनंद लगे से आनंद से मंदिर
3: तेज ए समय बारिपदार विभिन्न जगार माँ दुर्गा आकर्षक मेढ़ और तरण सौंदर्य सहर को एक अपरूप शोभा विमंडित करें
10: बुद्धि स्वरूपिणी महिषासुर संजनाशिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव
5: ताहले आसंतु ए शारदीय जगत जननी माँ दुर्गा उत्सव समय शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष माँ अंबिका दर्शन करने पूजार्चना करने आउ करुणा लभिबा।

सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए परम सुंदरी फिल्म का ये गाना।

0: ये गीत आपने परम सुंदरी फिल्म से सुना।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: देवकी पंडित की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे संदीप नाथ और संगीतकार थे संदीप चौटा। फिल्म का नाम था साहिब बीवी और गैंगस्टर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर।

दिल्ली सिक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी रेखा भारद्वाज और साथियों की। आज है दोस्तों वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस हर वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की 2026 की ये थीम है, उनकी आंखों से दुनिया देखें। इस साल की ये थीम हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बदलते पर्यावरण और इंसानी दखल के बीच पशु पक्षी इस दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। इनकी मदद करने के लिए विश्व पशु दिवस मनाने का ये उद्देश्य दुनिया भर के पशुओं के जीवन को बेहतर बनाना और उनकी देखभाल करना आदि, इनकी मदद करने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास नहीं करना, बस छोटे छोटे कार्यों से उनकी सहायता की जा सकती है। जैसे पक्षियों के लिए अपने छत या बालकनी में दाना पानी रखें, गाड़ियों को संभाल कर चलाया जाए ताकि उसकी चपेट में ये ना आ जाए। यदि कोई पशु पक्षी घायल दिखे अपने आसपास तो किसी पशु संस्था या चिकित्सक से संपर्क

करें। पशु पक्षियों के साथ दया करुणा और प्रेम का व्यवहार करें और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति लें। पशु पक्षी हमारी भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हमसे अपेक्षा रखते हैं और हमें करना भी चाहिए। आइए संकल्प लें इस विश्व पशु दिवस पर इन बेजुबान जीवों के प्रति हम संवेदनशील रहेंगे, ये न केन प्रकारेण इनकी रक्षा करेंगे ताकि ये पशु पक्षी भी सुरक्षित जीवन जी सकें और हम भी। ये गाना आइए अब सुनते हैं। ये गाना एक था टाइगर फिल्म से है।

0: एक था टाइगर फिल्म का गीत आपने अभी सुना, आवाजें तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की, कौसर मुनीर के बोल थे, सुहेल सेन का संगीत था।
1: भारती पर बहती है सुरों की सरिता।

घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज से। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल दिया अमित त्रिवेदी का संगीत था। आपका दिन शुभ रहे, आप सुखी हो, समृद्ध हो, इसी कामना के साथ ही आज सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन कैसे हुई थी अभिनय

0: जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

30 अगस्त सन 1901 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैले

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे। गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उनमें से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिले उठते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद है शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म अनाड़ी सब कुछ

सन 1958 लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: हाय हाय,
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
5: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी

0: पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाला युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सैकड़ों की याद में आयोजित की जा रही है। एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये शाम 6 बजे शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: चलन है कि वो लोग फिल्मी गानों पर ही, ये जैसे मेरे स्कूल में एक लड़की थी जब मैं 8वीं 9वीं में थी, वो भी सिंधी थी, तब वो गाना चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी। कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ, अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने सतगुरु। तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म, वो ही हम निकाल

0: करेंगे फिल्मी गानों पे हम गणपति के भजन, जैसे रमैया वस्तावैया तो उस पे किया मुरैया गजानना मुरैया गजानना सुख दे सकल जना ऐसे
1: जी।
0: अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले उनकी जितनी टीम थी जो भी उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
1: जी, जी
0: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सुषमा श्रेष्ठा इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नए नाम नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका
1: जी
0: उसमें
1: जी।
0: मेरा नाम पूर्णिमा है, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा रहेगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखें या क्या, तो वहां मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों बाकी जो टीम था उनका कि सुषमा श्रेष्ठा पूर्णिमा श्रेष्ठा एकदम से क्लिक हो जाएगा।
1: हाँ, हाँ।
0: पर ठीक है, अब ईगो हैसल्स जहां आ गए उसका तो कोई इलाज ही नहीं मंदाकिनी जी। तो रमेश तो मेरा भाई है जो रमेश तौरानी जी हैं, मैं कई सालों से उसे राखी बांध रही हूँ। कहा छोड़ सुषमा छोड़, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे। तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूंगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे, मतलब स्क्रीन में दो पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस उन्होंने ही मुझे, अपनी पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी बाहरों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना, अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे
1: जी।
0: तुम

आपने भी हमें उन दिनों की याद दिला दी जब नई नई पूर्णिमा गायिका के रूप में हमारे सामने आई थी। बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती हैं। तो बाल गायिका से व्यस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे

0: चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी, तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना
0: सरगम जी।
1: तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी।
0: बिल्कुल।
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा, बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं एक चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक आप कामयाब रही। एक हद तक नहीं, आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने एक गाना गाया था, उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा
1: जी।
0: जो तुतु तुतु तारा में हमें दिखाई दी थी, है ना, और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं, मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने, मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान ले, तो आप समझ लो कि आप कामयाब
0: सफल हो गए हैं।
1: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही
0: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
0: एक जो गले में एक अलग ही रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में, वो पूर्णिमा ही
1: मानती हूँ,
0: वो पूर्णिमा ही गाती है।
1: ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
0: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
1: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
0: हाँ।
1: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक USP है
0: जी। लेकिन वो कमर्शलाइज होती थोड़ा सा,
1: हाँ,
0: एक अलग तरह के मोल्ड हो गई।
1: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
0: चुलबुलापन जो आवाज,
1: हाँ, वो एक वक्त के साथ आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
0: वो
1: ये
0: बाल,
1: कुछ है,
0: बाल मन था,
1: है ना। लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के लिए, उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब्बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती
0: है।
1: तो टेक्सचर आज सच नहीं बदला, हाँ, लेकिन क्या होता है, उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
0: जी।
1: तो वो थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस। और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी। प्रोफेशनल साजिश थी कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
0: बनानी है,
1: तो। जी,
0: तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा सेठ से बात करती है जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
1: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी। तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचमदा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
0: जी,
1: आ रहा
0: जी,
1: पर
0: जी, एक अलग रूप से जी पाती,
1: से जी पाती
0: को,
1: उनके संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ, शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे, सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
0: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है, यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तू तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है।

0: ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
1: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन। बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलूं, पछाड़ खाई। वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे, वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना? हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है। मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना? क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना? तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं, या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले, वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना?
0: जी
1: तो ये सारी जिल्लतें सही। लेकिन एक बात बोलू मंदाकिनी जी, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी,
0: जी
1: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं, उन वो पहचान करा रहे हैं सब लोग के, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं।
0: जी
1: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से, और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी,
0: बिल्कुल
1: मैं
0: ये
1: हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी,
0: जी
1: उनको बहुत प्यार दूंगी, और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास
0: उनको
1: उन्हें
0: दिलाऊंगी,
1: दिलाऊंगी,
0: बहुत
1: वो
0: बड़ी
1: बहुत
0: बात।
1: जरूरी
0: ये
1: है,
0: एक बड़ा मन ही ये बात
1: वो बहुत
0: कह
1: जरूरी
0: सकता
1: है।
0: है कि मेरे साथ जो बीता मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ
1: बिल्कुल
0: वैसा बिल्कुल नहीं
1: कभी नहीं।
0: करूंगी। पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद।
1: शाम है धुआं धुआं।
0: जी

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: कभी।
1: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था तु तु तु तु।
0: पहला तो वो था तुम ताना नाना ताना
1: जी।
0: फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बीता है
1: जी,
0: तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रैटेजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी
1: जी,
0: दिस इज नॉट द एंड, मैं आऊंगी किसी ना किसी तरह, मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर। क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना। पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है। मेरी पूरी जिंदगी ही, मैं हमेशा कहती हूँ, एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया, तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं, और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतु तारा के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतु तु तु तु तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था वो मैं हूँ गांव के गोरी बाबू रंग लहरे वरा मुझको भी चलना सिखा, वो वाला। तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
1: जी के जी
0: मैं हूँ गांव के गरीब बाबू रंग लहरे और गीता दत्त जी का स्टाइल जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब
1: हुआ।
0: फिर दूसरा गाना तुतु तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो कर दो हमें माफ तुम कर दो ना वो सब, तो वो कामयाब हुआ। तो मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: देखिए हर हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, है ना, कोई माने ना माने।
1: हाँ हाँ।
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती हूँ और दे सकती हूँ वो शायद ही कोई दे सके।
1: जी
0: सॉरी, मैं खुद से ये कह रही हूँ आज,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया। वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले। तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा जरूर, शाम है धुआं धुआं, वो तो मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है।
1: जी,
0: तो उनका उनकी डिक्शन बहुत साफ है, क्लियर जिसे हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन, तो क्वीन नहीं महारानी है, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना
1: जी,
0: वो एक अलग टाइप की।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: वो मैंने नोट किया था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर का सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जानती हैं का डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंस।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: है ना?
1: अपने और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन
0: जी,
1: बीवी नंबर वन, मैं तो रस्ते से जा रही थी, है ना, कुली नंबर वन, मतलब गोविंदा और करिश्मा कपूर की जो जोड़ी पर्दे पर दिखाई देती है।
0: हाँ, ये एक अजीब बात है। हाँ, कि करिश्मा को मेरी
1: इनफैक्ट
0: काजोल को भी, वो मिस्टर लोवा लोवा, मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना ये,
1: क्या बात,
0: किसी और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया। हाँ, ना तुमने तो खुद नहीं गाया, मतलब इतने वो एक्सप्रेशंस। मैं खुद भी मतलब शॉक में हूँ।
1: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना सुनना, कितना तो मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है, वो आदमी इंसान ही बेकार है।
0: देखिए करिश्मा का एक अजीब एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका ना, वो सिर्फ मैंने कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्श जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया। छोड़िए, खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते। हाँ, हैं, वो हम पर छोड़ देते।
1: जी, जी, जी।
0: सुने जैसा तेरा मन, हे सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा, हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन।
1: क्या बात है।
0: तो ये सब हमारे इनपुट्स होते।
1: जी बिल्कुल,
0: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारे इनपुट्स होते। सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
1: लेकिन एक गायिका या गायक के खुद की जो IQ है उसका जो
0: बहुत कम
1: है ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा रही है
0: यकीन
1: उसे पकड़े, मतलब लगता है कि करिश्मा कपूर ये गाना गा रही है ना।
0: बिल्कुल।
1: ये

0: सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक ले जाती है।
1: कुदरत कुछ साथ देता है,
0: हाँ,
1: पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम बढ़ाते।
0: तो आप कहें तो यही गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक लिया जाए।
1: प्लीज, प्लीज,
0: हमारे श्रोता भी थिरक लेंगे।
1: प्लीज
0: तो आइए सुनते हैं।

0: कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया? या
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने मैं गाती थी कि डैडी भी रोते थे। इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती
0: जी,
1: ऐवे ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफकोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड, वेरी प्राउड ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सैंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
0: जी,
1: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। पर ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और ये मैं दिल से कह रही
0: हूँ, जी, जी, जी।
1: इतना भी किसको मिलता है।
0: बिल्कुल, और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक का आपका चार्ट बस्टर दौर,
1: जी
0: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहाँ हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें कि मुझे वो गाना मिल जाता।
1: नहीं, मैंने ये दुख कभी किया भी नहीं मंदा के नीचे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुदरत जो करता है बहुत सोच। हम फिजिकल फॉर्म में, हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं तो वो तो जगत पिता है, जगत माता है, वो तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे?
0: बिल्कुल,
1: हमारा बुरा कभी नहीं सोचेंगे।
0: और उन्होंने सोचा भी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तभी आज पूर्णिमा, पूर्णिमा के नाम से।

0: से जानी
1: बहुत
0: जाती है।
1: बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी, यहाँ सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स अभी भी गा रही हूँ
0: जी।
1: यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आज ये सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं। फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं
0: जी।
1: जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया
0: जी,
1: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझे ते पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला शोधून सापडला, कुठला देव बाई पावला जीवच गहिवरला, उरात धड धड वाढली ठोका सरा चुकला छो मंतर।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: तो ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है। और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा
0: जी।
1: पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी
0: जी।
1: अभी, ये एक साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूँ, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भैया से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूंगी। बात वहीं खत्म हुई। फिर एक हफ्ते वो फोन करते रहा, मैंने मना किया, फिर कुछ 10-15 दिन के बाद फोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास, वो मुझे हमेशा बेटा, बेटू बाजा मैंने है, देखा मैं बजा बाजा, मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूं, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है, सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना गवाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये भाग्य मैं कहूंगी
0: जी।
1: ये किसको मिलता, गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
0: ये बड़ी बात है,
1: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल,
1: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक,
0: बिल्कुल सही कहा। तो एक मराठी गाना सुन ले, बताइए।
1: बचपन में जब सुषमा श्रेष्ठा के नाम से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेळके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने, तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने
0: जी,
1: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है
0: जी।
1: किल बिल पक्षी बोलती झुड़ झुड़ झुड़ झुड़ झरे वाहती, पानो पानी फूले बहरती, फूल पाखरे वर विर विरती, स्वप्नी

0: बहुत सुंदर, क्या बात है।
1: तो मराठी गाने, बस मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से, बहुत ज्यादा। लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
0: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि बंगाली, नेपाली, मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी आपने गाया।
1: बिल्कुल।
0: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण, यानी जो डिक्शन आप करते हैं, और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
1: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफकोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज के उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे क्या, मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं
0: जी,
1: पर गिफ्ट। ये गॉड गिफ्ट, ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था। वो हर भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी, तो शायद ये आई से जैसे आवाज

0: मिली। वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा मंदाकिनी जी, सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आया। जब
1: मराठी?
0: मैंने जब रिमिक्स की बात की ना,
1: हाँ
0: नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है। ये जेंजी क्राउड को पता पड़ना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: ऊंची है बिल्डिंग, टाड़ा टाड़ा टाड़ा, लिफ्ट तेरी बंद है, टाड़ा टाड़ा टाड़ा, कैसे मैं आऊं, टाड़ा रा रा रा रा रा, आजा आजा आजा बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
1: जी, अनु मलिक के साथ
0: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए, है ना,
1: जी।
0: पर वो रीमिक्स से मुझे याद आया।
2: ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है,

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया
1: जी,
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचम दा के साथ, वसंत देसाई जी सबके साथ काम किया। जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिंद ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया। जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू धड़कन में तू, ओ माय जानू आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, हाँ फर्क सिर्फ माहौल में हुआ, माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं।
0: अब और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया, और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है। हम भी जब तक गाते थे, भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनकी सबकी जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
0: बेसिक्स बहुत,
1: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है। एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी कि नहीं, है ना। अब आप बोलो कि क्या रे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहेगा ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोलो। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरी रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर

0: कोई भी या हम दो है ना, तो कम अज कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे तो एक कम अज कम नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है।
1: माहौल वैसे ही होता था वो, गर्माहट।
0: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो फिर शुरुआत से गाना शुरू करना पड़ेगा। तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती ना
1: हो जाए,
0: कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए। तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूँ।
1: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
0: जबकि बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है
1: जी।
0: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
1: तुला हुआ है।
0: अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहा अभी मैंने देखा है।
1: मतलब संगीत की ये हालत अगर हो जाएगी तो एक नया सिंगर
0: तो वो पॉजिटिविटी आएगी,
1: वो सीखेगा कहाँ से आगे के लिए।
0: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी जाएगी, है ना। मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनकी नियत, शायद हो सकता है नियत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
1: रातों रात स्टार बन
0: जाना, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, क्या करेंगे वो। तो हमने सराहना करनी चाहिए बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
1: जी, ताकि आगे चलकर एक
0: उनको
1: करियर जो बनता है,
0: हर बार उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश कर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को, वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता समझदारी उसी में
1: जी। एक गाना सुन लिया जाए,
0: कौन सा बताइए,
1: आप बताइए आपकी पसंद चल रही है, हमें तो आपके सभी गाने पसंद है।
0: हकीयत मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, हकीयत चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के, मिस्टर लोवलो तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवलो तेरी। उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है कि पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही है। मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए,
1: नहीं नहीं बिल्कुल,
0: पर आज का ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती,
1: और हम भी मौका नहीं गंवाना चाहते, तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: धड़काए मिस्टर लोवा लोवा मेरी जान ये जाए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहाँ पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे। हाँ। वो भी इस गाने को सुनना
2: बिल्कुल
1: पसंद
2: बिल्कुल। और तू मेरा हीरो नंबर, पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा, और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
1: यही खास
2: स्टेज
1: है।
2: पे यही खास है मेरे लिए, तो यही खास है
1: जी।
2: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
1: अच्छा।
2: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना, हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा बहते
1: जी,
2: हैं
1: जी।
2: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चीता की आग जलेगी
1: जी।
2: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
1: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद।
2: प्लीज, चने के खेत में।
1: अरे

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठा जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन। बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी, आज की विविधा में न जाने कितनी स्मृतियों की मंजुषाएं खुलने वाली हैं।
0: जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम है ही ऐसा।
1: हाँ।
0: हमारे विविध भारती का जो संग्रहालय रूपी खजाना है।
1: हाँ।
0: उस खजाने से चुन चुन कर ऐसे जवाहरात लेकर के आता है अपने श्रोताओं के लिए।
1: आज ऐसी ही स्मृतियां हम आपसे बांटने आए हैं।
0: जी मनीषा जी, इस हफ्ते 9 अक्टूबर को स्मृति दिवस सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन साहब का।

0: श्री रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ जब जसपाल सिंह के स्वर में गूंजती हैं तो सारा वातावरण बहुत ही भक्तिमय हो जाता है और इन चौपाइयों को फिल्मों में बहुत सुंदर तरीके से दर्शकों तक पहुँचाया एक महान संगीतकार ने जिनका नाम है रविन्द्र जैन।
1: रविन्द्र जैन के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं मनीषा जी कि बचपन में ये मंदिरों में भजन गाया करते थे।
0: जी हाँ, शायद यही वजह थी कि उनकी रचनाओं में भी आध्यात्मिकता की झलक हमें लगातार मिलती है।
1: और इनके आरंभिक गुरु रहे हैं पंडित जीएल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम जी।
0: संगीतकार, गायक और गीतकार रविन्द्र जैन बहुत अधिक प्रभावित रहे बंगाल से और उनका परिवार भी कलकत्ता जाकर बस गया था 50 के दशक में।
1: जी, और गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर से रविंद्र जैन बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रविंद्र संगीत सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी उनकी और इसलिए संगीत के करियर को जो है शुरुआत वहां से हुई है। और पहला गाना एक संगीतकार के रूप में उन्होंने जो कंपोज किया उस संगीत रचना को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने और ये गाना आज तक रिलीज नहीं हुआ।
0: और रविंद्र जैन ने न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि कई अहिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया।
1: जी, ये अहिंदी फिल्में थी, मलयाली फिल्में, हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती, बांग्ला, तेलुगु, उड़िया और राजस्थानी फिल्में।
0: जयंत जी, रविन्द्र जैन साहब का राजश्री प्रोडक्शंस के साथ गहरा नाता रहा और राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्म जो बनी 1973 में सौदागर, वहां से रविन्द्र जैन साहब का संगीत स्टैब्लिश होता है हिंदी सिनेमा में और उसके बाद सारी सुपरहिट फिल्में जैसे गीत गाता चल, चित चोर, अखियों के झरोखों से, नदिया के पार,
1: 2006 में फिल्म विवाह तक।
0: जी हाँ, एक लंबा समय रविन्द्र जैन जी ने संगीत को दिया राष्ट्रीय बैनर्स के तले। और रविन्द्र जैन साहब का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा कि दक्षिण भारत के महान गायक येसुदास को उन्होंने हिंदी फिल्मी संगीत में इंट्रोड्यूस किया और उनके बहुत ही मीठे गीत रविन्द्र जैन जी के स्वरबद्ध किए हुए हैं। इसके अलावा हेमलता, आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह जैसे कलाकारों को भी उन्होंने हिंदी फिल्मी गीतों में मौका दिया और आज उन सभी के गीतों से हिंदी सिने जगत समृद्ध है।
1: येसुदास की आपने बात की मनीषा जी, और रविंद्र जैन साहब का बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है जो येसुदास और हेमलता ने गाया है फिल्म चितचोर के लिए। तो पहले वो सुन लेते हैं और फिर जो रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं उसे सुनवाएं।

0: येसुदास और हेमलता के स्वर में इस मीठे गीत के स्वर रचयिता रविंद्र जैन जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय में है। श्रोताओं, जयंत जी ने इस गीत को सुनने के पहले वादा किया था कि उस रिकॉर्डिंग को हम आपको सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं गीतकार, गायक और संगीतकार रविंद्र जैन से सुधांशु शेखर की ये बातचीत।
1: मैंने जब संगीत की शिक्षा लेना आरंभ किया
2: जी,
1: तो गायक के तौर पे ही किया, लेकिन गायन के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नाम थे कि मुझे ये समझ आ गया, जल्दी ही समझ आ गया
2: जी,
1: कि जहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक ही जाना मुमकिन नहीं है, तो वहाँ से आगे की तो बात बहुत दूर है। यानी उस साल बड़े गुलामी खान साहब थे, अमीर खान साहब थे, जिन दिनों हम सीखा करते थे
2: जी,
1: और खान साहब अब्दुल करीम खान साहब, उनका नाथ जी, यानी जो जो बड़ी हस्तियाँ उस वक्त सुनने को जिनका हमें गायन मिलता था। तो आज तो ऐसे लोग मैसर ही नहीं हैं, इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि कंपोजिशन के क्षेत्र में कदम रखूं। वहाँ भी बड़ा कंपटीशन है, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत अपनी बात कहने की गुंजाइश है
2: जी। लेकिन आपको गीतकार बनने की कैसे सूझी?
1: गीतकार बनना अगर मैं कहूँ कि एक मजबूरी थी, यानी लिटरेचर से तो मुझे बचपन से लगाव है, लेकिन फिल्में जो मैंने गीतकार के रूप में की हैं, उनमें यूँ था कि मैं जब बॉम्बे आया तो मेरे पास धुनें होती थी, लोक धुनें थी, क्लासिकल राग तो थे ही सीखे हुए जाने हुए, लेकिन सुनाने के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लव्स तो चाहिए ना, शब्दों के बिना उनको क्या समझ आएगा, सिर्फ ट्यून्स अगर सुनाते रहें, और मेरे लिए कोई राइटर उस वक्त जब मेरे

0: असल में नहीं थी तो कौन लिखता, तो टूटे फूटे जो बोल मैं गाता था वही लोगों ने पसंद कर लिए और उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बहुत सराहा। और कुछ यूं भी था कि काम जल्दी करके देना होता था
1: जी,
0: तो इन सब बातों के तहत मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ, गीतकार कह लें शायर कह लें, बस इसी तरह बन गया हूँ।
1: रविंद्र जी, आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि आपके गानों में हर दो तीन चार फिल्मों के बाद जो एक फिल्म आती है तो उसका कोई ना कोई एक गीत का विषय या राधा होती है, मीरा होती है। जैसे गीत गाता चल का आपका गाना है शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम
0: जी,
1: या फिर राम तेरी गंगा मैली का वो गीत एक राधा एक मीरा या फिर शाम तेरे कितने नाम में भी एक गीत है या फिर प्यासा सावन का भी एक गीत है,
0: प्यार का सावन में। जी हाँ
1: जी हाँ, प्यार का सावन में,
0: जी,
1: जिसमें कि उस गाने का विषय जो है राधा या मीरा है।
0: जी,
1: और हमेशा आपने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है
0: जी,
1: या करने की कोशिश की है राधा और मीरा के बीच में, तो आखिर राधा और मीरा के चरित्र आपको इतने प्रभावित क्यों कर पाए?
0: सबसे पहली बात तो यह है कि मैं ब्रिज भूमि से मेरा ताल्लुक है
1: जी,
0: और वहाँ पे राधा और कृष्ण की आराधना है, तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी जब कविता लिखना शुरू करेगा उस क्षेत्र का आदमी तो उनसे यानी उनकी आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। तो मीरा और राधा का जहाँ तक सवाल है, मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि ये एक ही रूप के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, क्योंकि आराध्य तो दोनों का एक ही था, अब किसको मिला या किसको नहीं मिला ये तो गूढ़ विषय है इस पे कहना। जैसे मैंने इस गाने में, राज साहब के गाने में कहा है, अंतरे में आपने अगर ध्यान दिया हो कि राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया।
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: तो प्राप्त करना, उपलब्ध करना, उसका आभास होना, कई बार वो भौतिक रूप में हम मानते हैं, कई बार मानसिक मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं, तो वो अलग अलग बातें हैं।
1: अच्छा रविंद्र साहब, ऐसा है कि हमारे फिल्मों के साथ ये त्रासदी है कि अगर उस फिल्म के गाने पहले हिट हो जाएं तो फिल्म के चलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये कहाँ तक सही है और ऐसा क्यों है?
0: संगीत भारतीयों के जीवन में यानी हमारे जन्म से पहले से
1: जी
0: शुरू होता है, ठीक है ना
1: जी,
0: यानी इतना जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारे जीवन के हर पहलू में संगीत है, कण कण में हम कह सकते हैं, और अंत तक संगीत रहता है। तो संगीत का लोकप्रिय होना बहुत स्वाभाविक है, और जिस फिल्म का संगीत जरा भी रिजनेबली अच्छा होता है, सरल होता है, लोगों तक पहुंच जाता है, तो वो लोग चाहते हैं कि फिर उस फिल्म को रिपीट करें, और संगीत मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी फिल्मों को रिपीट करवाने में उसका काफी हाथ है।
1: एक बात फिल्मी संगीत से संबंधित और साथ साथ इस हमारे सवाल का ताल्लुक गीत लेखन से भी है कि आमतौर पे जो आजकल ये होता है कि फिल्म की धुनें, गाने की धुनें पहले बना दी जाती हैं
0: जी,
1: और उसके बाद गीतकार को कहा जाता है कि भाई आप इसमें शब्दों को फिट कर दीजिए
0: जी,
1: तो इसमें से ऐसा नहीं लगता है कि गीतकार की जो अपनी उड़ान है, शब्दों की जो अपनी उड़ान है, वो एक सीमित दायरे में कैद हो जाती है?
0: डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आप कह रहे हैं। समझिए कि कोई अगर डांस का सीक्वेंस बनाना है, कोई ऐसी फिल्म है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ताल के साथ खेलना है, सुरों के साथ खेलना है, या अलग अलग विविध छंदों में काम करना है, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर गीतकार होते हैं वो एक सेट मीटर होता है हम लोगों को कहने का, ठीक है ना
1: जी,
0: गजलों का भी गीतों का भी, तो उसमें ही ज्यादातर लोग कह के लाते हैं, उसमें विविधता जो है ना वो कम आ पाती है, एक वेरिएशन जो हमें चाहिए होता है वो कई बार नहीं भी मिलता है।
1: अच्छा रविंद्र जी, इन दिनों व्यस्तताएं जो है वो किस क्षेत्र में है, साहित्य में, संगीत में?
0: साहित्य तो चूंकि बचपन से मेरे परिवार से मुझे मिला है, मेरे पिताजी पंडित श्री इंद्रमणि जैन वेद शास्त्री जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और मेरे बड़े भाई साहब श्री धनी कुमार जी, उन्होंने बहुत साहित्य पे काम किया, तो इन लोगों के सानिध्य से साहित्यिक जो संस्कार हैं वो तो जीवित रखने ही हैं, और मुझे उसमें आनंद भी बहुत आता है, तो साहित्य तो मेरे साथ चल ही रहा है, और संगीत की चूंकि शिक्षा ली है और संगीत के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो वो उत्तरदायित्व भी मैं निभाता हूँ। उर्दू की किताब शाया की है कि उसका नाम है उजालों का सिलसिला, उर्दू की गजलें नज़में नाज शरीफ हम इस तरह की चीजें हैं उसमें, हिंदी साहित्य में काम कर रहा हूँ और कुछ तर्जुमे कर रहा हूँ,
1: अनुवाद काम,
0: जी अनुवाद का काम कर रहा हूँ पर्शियन से सरल उर्दू में।
1: अच्छा, तो आपने इतनी सारी भाषाएं सीखी हैं?
0: बस ये रुचि है मुझे सारी भाषाओं में, मुझे बंगाली मेरी एक वीकनेस है, चूंकि कलकत्ते से मैंने करियर शुरू किया है
1: जी,
0: तो बंगला पे भी बहुत काम करता हूँ,
1: बंगला पे, उर्दू पे,
0: जी जी जी
1: हिंदी में कर ही रहे हैं
0: जी जी, हिंदी उर्दू, तो हिंदी उर्दू इसलिए कि वो अलीगढ़ में हिंदी उर्दू का मिला जुला माहौल है, और अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ और कलकत्ता काफी वक्त गुजारा है, वो खास तौर से बंगाली लिटरेचर के लिए ही मैं गया था और

0: बंगला म्यूजिक के लिए गया था।
1: तो आपने किसी दक्षिण भारतीय भाषा पे काम नहीं किया है?
0: म्यूजिक किया है उनके लिए, संगीत किया है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी किया, उससे पहले अभी यशुदास जी के साथ एक मलयालम फिल्म की थी, अभी कुछ गीत कैसेट बनाए हैं मलयालम के।
1: मलयालम भाषा तो आपको आती नहीं,
0: मगर संगीत किसी जबान का मोहताज नहीं है ना, आप जानते हैं उसकी अपनी जबान है,
1: अपनी भाषा होती है। तो आपको उससे कोई कठिनाई नहीं हुई दूसरी भाषा में?
0: नहीं, सिर्फ उसका शाब्दिक अर्थ पता चल जाए और फिल्म का क्या पस मंजर है वो मालूम हो जाए,
1: तो उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होती।
0: जी नहीं।
1: रविंद्र जी, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप रामायण के कुछ दोहे या चौपाई सुनाते।
0: रामायण में जो मैंने कुछ कहा है वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। दोहे चौपाई तो बहुत तुलसी जी ने जो कहे हैं सबने पढ़े हैं और सुने हैं। जिस संदर्भ का गीत मैं गाना चाहता हूँ, मुझे श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हैं
1: जी
0: सीता माता को कि वे राम जी ने की भेजे हुए दूत हैं, तो एक गीत वहाँ हमने रखा था।

0: जय राम।
1: अभी हम सुन रहे थे जाने माने गीतकार, संगीतकार, गायक रविंद्र जैन साहब के साथ सुधांशु शेखर की बातचीत। ये खास रिकॉर्डिंग हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आए थे श्रोताओं।
2: और जयंत जी,
1: जी
2: रविंद्र जैन जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो दूरदर्शन को रहा, एक सीरियल हुआ करता था रामानंद सागर जी का रामायण, उसका संगीत संसार कितना विपुल है वो हम आज भी भूल नहीं पाते हैं। जब जब रामायण देखते हैं रविंद्र जैन जी की स्मृतियां ताजा होने लगती हैं, उनकी आवाज हमारे आसपास जैसे एक बहुत ही आध्यात्मिक संसार रचने लगती है। रविंद्र जैन जी के स्वर में एक बहुत ही हॉन्टिंग मेलेडी है फिल्म अखियों के झरोखों से। उस गीत को सुनते हैं और एक बार फिर याद करते हैं रविंद्र जैन।

0: रविंद्र जैन जी के स्वर में इस सुंदर रचना को सुनने के बाद स्मृतियों की स्वर मंजूषा जो खुल चुकी है
1: जी,
0: उसके अगले कलाकार जो हैं उनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।
1: वाह, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।

0: श्रोताओं, जगजीत सिंह एक अमर आवाज, एक अमर गायक, हिंदुस्तानी गजल को विश्व पटल पर पहुंचा दिया जगजीत सिंह साहब ने, और उनकी आवाज वाकई उनके चाहने वालों के जहन दिल में उसी तरह मुनव्वर है, उसी तरह महकती हुई है जिस तरह ये गजल महक रही थी कुछ देर पहले।
1: वही गजल जो पहले मुशायरों में और शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत की बैठकों तक सीमित थी, उसे आम जनता तक पहुंचाया, पूरे भारत में संगीत प्रेमियों में लोकप्रिय कराया, और वो एक ही नाम है, जगजीत सिंह।
0: जगजीत सिंह साहब की याद आते ही न जाने कितनी गजलें, कितने गीत और कितनी ही उनकी लोक धुनों पर जो आधारित गीत हैं वो याद आने लगते हैं, खासतौर पर उनके गाए हुए कुछ बहुत ही सुंदर पंजाबी गीत।

0: बिल्कुल, और क्यों ना हो, क्योंकि मूलतः जगजीत सिंह साहब पंजाब के थे और उनका जन्म श्रीगंगानगर राजस्थान में हुआ था। जगजीत सिंह साहब का वास्तविक नाम जगमोहन सिंह धीमान था
1: जी
0: और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो संगीत की शिक्षा आरंभ की तो उनके पहले गुरु रहे हैं पंडित छगन लाल शर्मा जी और उस्ताद जमाल खान साहब से भी आपने संगीत की तालीम हासिल की।
1: बाकायदा शास्त्रीय संगीत सीखने वाले जगजीत सिंह साहब ने जब सुगम संगीत की गजलों को गाना शुरू किया तो कौन कह सकता था कि ये कलाकार अपने श्रोताओं के दिलों पर, अपने चाहने वालों के दिलों पर सदा राज करते रहेंगे। और न केवल गजलें, बल्कि जगजीत सिंह जी ने अपने करियर के उत्तरार्ध में बहुत सुंदर भजन भी गाए हैं जयंत जी, और उनकी

0: सुंदर भजन भी गाए हैं जयंत जी, और उनकी गाए सभी भजन आज तक हम सबके हृदयों पर राज करते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण ये भजन सुनते ही मन जैसे आनंद विभोर हो जाता है। श्रोताओं, आज हम महान गायक जगजीत सिंह साहब की खास रिकॉर्डिंग लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। उनके साथ उनकी अहलिया चित्रा सिंह जी भी थी, और ये विविध भारती की खुशकिस्मती थी कि ये मशहूर गजल गायकों की जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक साथ विविध भारती के स्टूडियोज में पधारी थी, और उनकी उसी रिकॉर्डिंग को हम आज आपकी नजर करते हैं। आइए सुने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का ये विशेष साक्षात्कार। इस इंटरव्यू को लिया है विजय चौधरी ने।
1: जगजीत भाई और चित्रा जी, एक सवाल जो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि आप गजल गायकी में पहले आए और उसके बाद में आप संगीत निर्देशन के क्षेत्र में आए, तो इन दोनों में आपको कौन सी अपनी शख्सियत ज्यादा प्यारी है और ज्यादा आप किसे इम्पोर्टेंस देते हैं?
2: ये दोनों चीजें कोई अलग नहीं है, क्योंकि संगीत निर्देशन गजल में भी करना पड़ता है
1: जी,
2: फिल्म में भी करना पड़ता है, तो बेसिक जो चीज है वो है म्यूजिक
1: जी।
2: तो मुझे तो दोनों चीजें प्यारी हैं और दोनों चीजें आती हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि गजल ज्यादा प्यारी है या वो ज्यादा प्यारा है, लेकिन क्योंकि गजल से हम ऊपर आए हैं इसलिए
1: जी
2: गजल को हम आगे रखेंगे, संगीत निर्देशन को आप समझ लीजिए कि साइड बिजनेस कह लीजिए।
1: अच्छा अच्छा, ये कहा जाता है कि हमारे भारत में गजलों में जो कॉर्ड का यूज किया है सबसे पहले वो आप ही ने किया, और इसकी वजह क्या है, यानी जो आपने चलन देखा उस वक्त के एतबार से उससे आप प्रभावित हुए या आपने इसकी जरूरत इसको कुछ पहले से अलग दिखाने के लिए समझी?
2: ऐसा है कि देखिए, संगीत जो है म्यूजिक, उसकी तो कोई लैंग्वेज तो कोई है नहीं उसमें, वो जबान सब मुल्कों की एक ही है
1: जी,
2: संगीत की जबान है वो एक ही जबान है
1: जी।
2: अभी आप जिस कॉर्ड जिसको कहते हैं उसमें तीन नोट्स होते हैं, पासा गा या सागा पा
1: जी,
2: वो आप तीनों एक साथ बजाओ तो उसको कॉर्ड कह देते हैं
1: जी।
2: तो अगर हम पहले धोती पहनते थे, कुर्ते पहनते थे, अब हम पतलून पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो गजल को कॉर्ड क्यों नहीं पहनाया जाए?
1: सही बात,
2: उसको आप क्यों पीछे रखना चाहते हैं?
1: यानी यूं कह लें कि कॉर्ड का कोड क्यों नहीं बनाया
2: जी,
1: यानी जो पाश्चात्य असर है, अब इसके आगे हम चलते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स में ही नहीं, हम देखते हैं कि धुनों में भी भारतीय जमीन पर काबू रखते हुए भी आप लोग कहीं ना कहीं उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो चाहे या कंपोजिशन में ऐसी बात हो, उसका असर भी तो
2: थोड़ा सा असर है, फिल्मों में ज्यादा असर है
1: जी,
2: वेस्टर्न मेलोडीज का, वेस्टर्न स्टाइल का जो है, लेकिन गजल में मैं समझता हूँ अभी कम है। गजल में सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, लेकिन मेलोडी में आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कुछ वेस्टर्न कॉम्बिनेशन है।
1: अच्छा, और एक चीज अब खासतौर पर मैं चित्रा जी से ही जानना चाहूंगा कि जबान की जानकारी तो एक जरूरी शर्त है किसी भी तरह के गाने के लिए, लेकिन गजल में कुछ खास सेंसिटिव हुआ करता है मामला, तो इसमें आपका क्योंकि बंगाल से रिश्ता है
3: जी,
1: तो कोई दिक्कत आपको लगी कभी या जगजीत भाई की वजह से वो दिक्कतें आसान होती चली गई?
3: हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप, शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, आती ही नहीं थी जुबान कुल, गा तो जरूर लेती थी, बचपन से गा लेती थी
1: जी,
3: लेकिन वो सुन सुन के गाना, बगैर समझ के गाना, वो और बात होती है। तो फिर जगजीत जी ने काफी हेल्प, मदद की इस फील्ड में, और धीरे धीरे समझ आने लगा, और अभी भी वैसे खास तो मुझे आती नहीं लैंग्वेज, सच बात तो ये है।
1: अच्छा,
3: तो ये वो तो मेरे बोल से आपको समझ, आप समझ गए होंगे,
1: आप कह रही हैं इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है, लेकिन लगता तो नहीं है
3: ऐसा। नहीं। मैं लेकिन वैसे एक एक गाना गाने से पहले, एक एक गजल कह लीजिए, इतना जरूर करती हूँ कि उस पर्टिकुलर गजल की जितनी मुश्किलात हो, कितने भी मुश्किल वर्ड्स हो जिसके मुझे मीनिंग्स नहीं मालूम, या कुछ भी उसके मतलब हो
1: जी,
3: उस सारी बातें पहले मैं अच्छी तरह से मालूम करके फिर ही गाना शुरू करती हूँ
1: जी। जी, एक इल्जाम अक्सर गाने वालों के ऊपर, गजल गाने वालों पर आजकल आता है कि गीतनुमा गजल ज्यादा आजकल गाई जाती है, किस बात की वजह से लोग ये कहते हैं कि ये गीतनुमा गजल हो गई है? क्या गजल गायकी का भी कोई खास पैटर्न हुआ करता है?
2: ये तो देखिए, अपना अपना ढंग है, अपना अपना नॉलेज है, आपको जितना मसाला आता है, जितना मसाला आप डाल सकते हैं चीज में उतना डालिए, बाकी रही गीत और गजल, आप एक गजल को एक घंटा भी गा सकते हैं, और एक गजल को आप तीन चार शेर होते हैं, तीन मिनट में खत्म भी हो सकती है
1: जी,
2: उसमें आप एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं बार बार, एक ही जगह तान मार रहे हैं बार बार, या सरगम बोल रहे हैं बार बार, तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपकी जो म्यूजिक की नॉलेज है उसको आप इम्पोज कर रहे हैं ऑडियंस के ऊपर।

0: गजल को पीछे छोड़ के आप अपनी नॉलेज को इम्पोज करें, वो करिए जरूर करिए, लेकिन आजकल फास्ट लाइफ है। पहले हम दिल्ली जाते थे 2 दिन में पहुंचे थे, आज आदमी चाहता है कि 2 घंटे में दिल्ली पहुंचे
1: जी,
0: क्योंकि इतना वक्त नहीं है, ऑडियंस के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो एक गजल को बैठ के आधा घंटा एक ही गजल सुनेंगे। वो चाहते हैं कि 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, उसमें कम से कम 20 गजलें हों
1: जी,
0: डिफरेंट कलाम हो, डिफरेंट शायरों का कलाम हो।
1: हाँ अच्छी बात कही आपने, यानी उसकी जगह यहाँ पर दाल में नमक जैसे ज्यादा नहीं।
0: ये नहीं मैं कहता कि नहीं करना चाहिए, वो कहीं कहीं खूबसूरत लगता है, लेकिन उसका ज्यादा जैसे मिर्ची या नमक डाल दो तो फिर वो बुरा लगेगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा चित्रा जी, गजल गाने में जुगलबंदी भी आप ही लोगों से शुरू हुई, और अगर शुरू न भी हुई हो तो मैं समझता हूँ कि मकबूलियत जो है वो आप लोगों से ही, इस जुगलबंदी को मेल फीमेल दोनों एक साथ एक चीज को गाएं, तो इसमें आप जो जगजीत भाई बंटवारा करते हैं किसी भी गजल में, तो फीमेल एंगल सामने रहता है उस शेर के पीछे जिसको चित्रा जी गाती हैं, और मेल आपके सामने, या किसी भी गजल को आप बांट सकते ही हैं कि ये
0: किसी भी गजल को नहीं बांटते हम
1: जी।
0: एक तो जैसे चित्रा जी बोल रहे हैं अभी फीमेल एंगल शेयर में हो, दूसरा एक यूनिवर्सल थॉट जिस शेयर में हो जो मेल और फीमेल दोनों पे जाता हो, तो वो मैं अक्सर इनसे गवाता हूँ।
1: अच्छा इसके कुछ एडवांटेजेस आपको खास दिखाई दिए, दोनों साथ में अगर कोई चीज गाते हैं तो ऑडियंस के ऊपर?
0: हाँ एक तो देखिए मोनोटोनी टूट जाती है
1: जी,
0: अगर एक ही आवाज आप सुन रहे हैं 3 घंटे कान में तो वो थोड़ी देर के बाद मोनोटोनस लगती है। तो एक गजल मैंने गाई उसके बाद एक इन्होंने गाई, तो एक वेरिएशन जो है ना वो कानों को भी मिलता है, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी बहुत वाइड हो गई है गजल की, आपको तो मालूम है।
1: जी हाँ जी,
0: पहले तो लोग घरों में ही गजल सुनते थे, या कभी कभार कभी गजल का प्रोग्राम होता था स्टेज पे, उसमें भी 200 या 300 आदमी। अभी जो गजल के प्रोग्राम होते हैं, हम लंदन में गए थे अल्बर्ट हॉल में तो 6,000 आदमी वहाँ हॉल भरा हुआ था, उसके बाद सन सिटी में गए 7,000 आदमी हॉल भरा हुआ, या इंडिया में भी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में 2,500 आदमी, 2,000 आदमी, तो इस तरह की ऑडियंस। चंडीगढ़ गए वहाँ 14,000 आदमी रोज गार्डन में तो गजल सुनने आया, वो पीछे 14,000 में कुछ सुनने वाले हैं, कुछ ऐसे ही आ गए हैं, कुछ तमाशा देखने आए हैं, तो वहां पे सिर्फ गजल नहीं रहती, वहां फिर कई कुछ और भी करना पड़ता है एंटरटेन करने के लिए।
1: जी हाँ जी। अच्छा गजल के साथ में जब लोग तालियां बजाते हैं ताल के अंदर तो कैसा लगता है, यानी
0: देखिए वो एक स्टेज होल्ड करने का जो है तरकीब है, तरकीब यह आकी कि वो पार्टिसिपेशन उनकी बजाती है ऑडियंस की, अगर ऑडियंस की पार्टिसिपेशन शुरू हो गई है इसका मतलब आपका प्रोग्राम जम जाएगा।
2: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये विशेष रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे विजय चौधरी जी, और श्रोताओं ये हमारे संग्रहालय की खास रिकॉर्डिंग थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जी हाँ, आइए सुनते हैं इस लाफानी गजल को जिसे लिखा है निदा फाजली ने, और आप इंतजार कीजिएगा हमारी अगली पेशकश का।

0: सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।
1: सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।
0: उर्दू अदब के एक महान शायर निदा फाजली, 12 अक्टूबर उनका जन्मदिन हुआ करता है, और आज विविधा में हम निदा फाजली साहब को बहुत दिल से याद कर रहे हैं। उनकी एक खास रिकॉर्डिंग लेकर भी आज हम हाजिर हुए हैं श्रोताओं, जिसको हम थोड़ी ही देर बाद आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात जयंत जी आपसे शेयर करना चाहते हैं।
1: मनीषा जी, मक्तिदा हसन निदा फाजली यानी हम सबके चहेते निदा फाजली साहब, इनके बारे में एक वाकया बताया जाता है कि जब वो किशोर वयन थे
0: जी,
1: एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, मंदिर में भजन चल रहा था और वो सूरदास का पद था जिसमें राधा अपने सखियों के साथ अपना दुख बांट रही है कृष्ण से बिछोह के बाद। उस रचना ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि तब से वो कविता की ओर मुड़ गए।
0: क्या बात है, एक शायर के दिल को ये बात बहुत गहरी लगी, और देखिए यही होता है एक शायर का, एक कवि का दिल। इस महान शायर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग श्रोताओं हमने अपने संग्रहालय में संग्रहित करके रखी है, जिसके कुछ अंश हम आज आपको अपने इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं। निदा फाजली साहब से बातचीत की है अहमद वसी साहब ने, जो विविध भारती के पूर्व उद्घोषक भी रह चुके हैं और स्वयं भी एक शायर थे। तो आइए सुनते हैं मशहूर शायर निदा फाजली से अहमद वसी साहब की ये खास बातचीत और उसके संपादित अंश।
2: निदा साहब, इस वक्त मुझे रघुपति साहब फराग गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है कि दिल को तेरी तलाश है वादिये कायनात में, तुझको कहाँ वो दे सदा, तुझको कहाँ सदा न दे। और वादिये कायनात की तरह फैला हुआ है हमारे इस प्रोग्राम का दामन, और मैं इस पसोपेश में हूँ, इस उलझन में हूँ कि आपको कहाँ से आवाज दूँ और आपसे क्या क्या सवाल करूँ और आपसे क्या क्या पूछूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की वसत का तकाजा ये है कि आप खुद अपने बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपनी यादों के बारे में, अपने अहबाब के बारे में।
3: एक साथ बहुत सारे सवालात, उन सारे सवालों का जवाब एक शेर। अब जहां भी हैं वहीं तक लिखो रुदादे सफर, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, मैं अपने घर में तीसरा बच्चा होने वाला था। मेरी वालिदा एक हादसे का शिकार हो गई, मकान की मरम्मत हो रही थी दिल्ली में, और वो छत से मुझे 3 महीने का रखे हुए नीचे गिरने वाली थी। मेरे मामू ने दोनों हाथों में उन्हें थाम लिया, वो बेहोश हो गई और मैं वक्त से पहले इस कायनात में चला आया। जब चला आया बाद में महसूस हुआ, गालिब का शेर याद आया कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मैंने अपने बचपन को अभी तक अपने साथ महफूज रखा है, बीती हुई उम्र को। मैंने एक बार झुंझला के कहा भी था कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत चुका है वो गुजर क्यों नहीं जाता। या बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और जब मेरी बेटी हुई तो मैंने एक नज्म लिखी थी उसके लिए कि बहुत मैला है ये सूरज, बहुत मैला है ये सूरज, किसी दरिया के पानी में इसे धोकर सजाएं, फिर गगन में चांद भी कुछ धुंधला धुंधला है, मिटा के इसके सारे दाग धब्बे जगमगाएं, फिर हवाएं सो रही हैं पर्वतों पर पांव फैलाए, जगा के इनको नीचे लाएं, पेड़ों में बसाएं, फिर धमाके कच्ची नींदों से डरा देते हैं बच्चों को, धमाके खत्म करके लोरियों को गुनगुनाएं, फिर वो जब से आई है यूं लग रहा है अपनी ये दुनिया, जो सदियों की अमानत है, जो हम सबकी रिवायत है, पुरानी हो चुकी है, इसमें अब थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ दुनिया बच्चों की तरह मुस्कुराए, बहनों की तरह खिलखिलाए।

0: कहानियों का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल मुतवज्जे होता है फिल्मों की तरफ। चूंकि ये फिल्मी सिलसिला ऐसा है कि हर शायर, हर गीतकार, हर लिखने वाला चाहता है कि इनसे वाबस्ता हो, इससे फिल्मों से वाबस्ता हो, और आपकी वाबस्तगी भी इसी फिल्मी दुनिया से है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप अपनी जवानी में, अपने बचपन में या पिछले दिनों में आप किस तरह की फिल्में देखते थे, पसंद करते थे, और फिर किस तरह के गीत आपको पसंद थे, या कौन शायर, कौन गीतकार, किस किस्म के गीत आपकी प्रेरणा का स्रोत बने?
1: देखिए साहब, बिहार में पटना अदीमाबाद के एक शायर हुए हैं शाद अदीमाबादी, उनकी एक लाइन है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि च्वाइस का इख्तियार जिंदगी में होता नहीं है, जहाँ पैदा हो गए वो आपका परिवार, उस परिवार की जो भाषा वो आपकी भाषा, वो परिवार जिस मोहल्ले में वो आपका मोहल्ला, वो मोहल्ला जिस नगर में वो आपका नगर। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जब एक घर छीना गया तो घर की तलाश में पूरे देश में भटकता रहा, ये भी बेवकूफ़ी थी। घर चला गया था कराची और मैं उसे ढूंढ रहा था हिंदुस्तान में। मालूम पड़ा एक पड़ाव बम्बई आया, उस जमाने में धर्मवीर भारती यहाँ पर थे, उनके धर्मयुग में लिखना शुरू कर दिया, फिर ब्लिट्स था उसमें लिखना शुरू कर दिया। मालूम पड़ा कि एक दिन बेघर के एक शख्स जिसका नाम निदा फाजली था, उसके लिए मैसेज रखी होती थी हर जगह जहां वो काम कर रहा था। थोड़ा थोड़ा कहीं धर्मयुग में मैसेज पड़ी हुई है, कहीं ब्लिट्स में पड़ी हुई है, कहीं किसी रेडियो स्टेशन पे पड़ी हुई है, और वो मैसेज ये थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे मिलिए, आपसे कुछ काम लेना है, कमाल अमरोही। मैंने सोचा कि मेरा कमाल अमरोही से क्या काम हो सकता है, फिर भी क्योंकि स्ट्रगल हर रोज भागते हुए सूरज का पीछा करता है और सूरज उससे आंख में चोली करता है, फिर भी वो सूरज से पर अपने विश्वास को खत्म नहीं करता। तो मैं कमाल अमरोही के चला गया। कमाल साहब मिले 2 बजे के करीब, और वो स्टाइलिश आदमी थे कमाल साहब, एक लफ्ज भी अंग्रेजी का बोलते नहीं थे, और वो भाषा बोलते थे जो आज से 50 साल पहले अमरोहा में बोली जाती थी। मैं बम्बई आकर उस भाषा को भूल गया था। मैंने कहा कमाल साहब आदाब, मेरा नाम निदा फाजली है, तशरीफ रखिए, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया, उनका स्टाइल है, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया कि मुझे एक मुकम्मल शायर की जरूरत है। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, और ये इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया कि आप मुझे मुकम्मल शायर समझ रहे हैं। कि जी, मुझे आपसे कुछ नगमात तहरीर करवाने हैं। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ साहब, आप मुझे बताइए कि क्या गाना है, कैसा लिखना है। लेकिन इससे पहले कि आप गाना लिखें, मैं एक बात जाहिर कर देना चाहता हूं कि इल्मी शायरी अलग होती है, फिल्मी शायरी अलग, और फिल्मी शायरी लिखने के लिए आपको मेरे मिजाज की शिनाख्त बहुत जरूरी है। जानिसार अख्तर मेरे मिजाज को पहचान गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने कहा मैं ये शर्त तो पूरी नहीं करने वाला, कोशिश करूंगा कि आपकी सिचुएशन पर कुछ लिखूं। तो वो अपनी सिचुएशन जो मुझे सुनाई उन्होंने, तो वो जुबान में सुनाई कि मैं भी थोड़ी देर के लिए हिल गया। कह रहा हमारी दास्तान उस मुकाम पर आ गई जहां मलका आलिया रजिया सुल्तान यानी हेमा मालिनी सियाह लिबास में मलबूस खरामा खरामा चली आ रही हैं, जिसे देखकर हमारा आलय अक्कासी खैर मकदम के लिए आगे बढ़ा। मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया। उनके असिस्टेंट ने बाद में कहा इसका मतलब ये है कि हेमा मालिनी सफेद घोड़े पर काले लिबास पहने

पहने हुए आ रही हैं और आलय अक्कासी यानी कैमरा उनकी तरफ मूव हो रहा है। तो मैंने लास्ट टू सॉन्ग्स आई रोट फॉर दैट फिल्म, लेकिन उस फिल्म के बनने में इतना टाइम लगा कि कमाल साहब की गुडविल जो है उसने मुझे इंडस्ट्री में मशहूर कर दिया कि कोई ऐसा आदमी है जिससे कमाल अमरोही गाने लिखवा रहे हैं। तो जाहिर है कि नॉट निदा फाजली बट बिकॉज कमाल अमरोही इज मेकिंग हिम राइट। तो फिर मैं राज कपूर से लेकर यश चोपड़ा से लेकर इस्माइल शरीफ तक मोर और लेस विद एवरी म्यूजिक डायरेक्टर आई वर्कड। मैं जिस युग में आया, जन्म लिया, वो युग पिछले युगों से अलग था। हालांकि मुझसे पहले गालिब का एक मशहूर शेर है कि बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। मैं जिस जमाने में आया उनमें लड़कियां काफी चतुर हो चुकी थी। वो आपके चेहरा देखने के बाद आपके चेहरे पर लिखे हुए बैंक बैलेंस को भी देखना चाहती थी। बहुत से चेहरे अच्छे लगे, लेकिन मैं जो फासला तय कर रहा था वो एक रोटी से दूसरी रोटी का था। नदीर अकबर आबादी ने कहा था कि हमको तो चांद में नजर आती हैं रोटियां। तो मेरी जो अफेयर्स रहे वो यक तरफा रहे। मैंने चाहा, मुझे नहीं चाहा गया। मैंने इंतजार किया, किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया। मैं उन्हें कसूरवार भी नहीं ठहरा, क्योंकि पढ़ी लिखी बाहोश हर लड़की को चेहरे के साथ बैंक बैलेंस और जेब के पैसे भी देखना चाहिए। और उस वक्त मेरे पास न फ्यूचर था न वक्त था। मेरी तलाश रोटी की थी, दिल को तलाश मोहब्बत की थी। दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे और वक्त निकले जा रहे थे। तो कॉलेज में मुझे याद है एक लड़की थी, मैं एमए कर रहा था अंग्रेजी में, तो वो 45 के एंगल में बैठती थी जहां मैं बैठता। फिर रास्ते में जब बाहर कॉलेज मतलब क्लास रूम के बाहर गार्डन था, उस गार्डन में जब वो आती है तो गार्डन मुकम्मल हो जाता है। वो जिधर से गुजरती थी मालूम पड़ता था खुद संवरती थी, बल्कि पूरे माहौल को संवार देती थी। मैंने उस जमाने में एक नज्म भी गई थी, वो फूल फूल नजर सांवली सी एक लड़की जो रोज मेरी गली से गुजर के जाती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, बाहर होके तलाशे बाहर करती है, न कोई मेल न कोई लगाव है, लेकिन न जाने क्यों बस उसी वक्त जब वो आती है कुछ इंतजार की आदत सी हो गई है मुझे, एक अजनबी की जरूरत सी हो गई है मुझे। मेरे बरांडे के आगे ये फूस का छप्पर, गली के मोड़ पे उखड़ा हुआ सा एक पत्थर, ये एक झुकती हुई बदनुमा सी नीम की शाख और उस पे जंगली कबूतर के घोंसले का निशान, ये सारी चीजें कि जैसे मुझ ही में शामिल हैं, मेरे दुखों में मेरी हर खुशी में शामिल हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी यूं ही गुजरती रहे, अदा उन्हास से लड़के को प्यार करती रहे। तो उसे देखकर सुबह भी अच्छी लगती थी, उसकी खामोशी से दिन भी जागता था, बेमतलब उसका इंतजार करते थे। एक दिन आया कॉलेज में मैं तो अचानक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मिस टंडन इज नो मोर। वो कॉलेज आते वक्त किसी ट्रक के बीच में आ गई और वो चली।

0: कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है।
1: क्या
0: ये भी
1: बात है,
0: निदा साहब ने ही कहा है मनीषा जी।
1: जी हाँ, और इतनी खूबसूरत बात कहने वाले इस महान शायर को आज हमने याद किया, और हमने याद किया संगीतकार गायक रविंद्र जैन साहब को, साथ ही एक महान गायक जगजीत सिंह भी आज हमारी विविधा की जीनत थी, उनके रिकॉर्डिंग भी हमारी विविधा की आज जीनत थी। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वक्त तो दीजिए विविधा के इस अंक को समाप्त करने की इजाजत आप सभी को मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: from IC Nagoya 2026 etching another glorious chapter into its sporting history. Komati Parikh, Akashwani News, Delhi.
1: Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today released two male great Indian bustards into the wild at Sam in the desert national park at Jaisalmer in Rajasthan. In a social media post, the Union Minister said that this landmark success has been made possible by the nearly decade-long unwavering dedication of India's scientists, researchers and ground staff. He added the release marks an important transition in India's Great Indian Bustards Conservation Programme. Mr. Yadav also thanked Prime Minister Narendra Modi for his support in enabling the scientific community to work towards the conservation. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Journey of Viksit Bharat will be built on strength of India's institutes, MSMEs and startups, says Vice President C.P. Radhakrishnan. In West Bengal, campaigning ends today for Nandigram Rajinagar Assembly by-elections. PM Setu scheme aiming to transform industrial training institutes completes 1 year. IMD forecasts heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Yemen confirms strikes against Houthi-controlled areas in Sana'a and Sada. Houthi claims missile and drone attack targeting Aramco facilities in Riyadh. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. India secures fourth place in overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सदा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
3: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
2: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक

0: कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
2: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
3: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
2: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पैरो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क

0: परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर airnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सदा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
2: हूती विद्रोहियों के बियाहत पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैज और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे, जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
3: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी

0: और कराईकाल में अगले दो दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 के साथ चार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି 308.6 meter ତଥା 972 kHz ଯୋଗେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ

आकाशदीप, इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे में।

0: आप सुन रहे थे लागी छूटे, लागी नहीं छूटे राम इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुल गया, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज फिल्म तीसरी मंजिल। मजरू सुल्तान पुरी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: सी रामचंद्र की तर्ज साहिल ध्यानवी की बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म बहुरानी का ये गीत था सदाबहार नगमे। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

श्रोताओं नमस्कार, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के मनचाहे गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से गीत शामिल हैं और किन श्रोताओं की फरमाइशें शामिल हैं, इन बातों के लिए चलिए मनचाहे गीत कार्यक्रम के सफर में चलें हम और आप साथ साथ बनाकर आपके मनचाहे गीतों को अपना हम सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे थे चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विनय अवस्थी ने इस गीत को पसंद किया, पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं। और इसी गीत की फरमाइश की अम्बाला कैंट हरियाणा से रतन लाल, विनोद कुमार, साहिल, सुदेश और मनीषा ने इस गीत को सुनना चाहते थे। काशी निवास बंगाली पंजाब महाराष्ट्र के हमारे श्रोता प्रकाश रंभांडे, भारती रंभांडे, नागपुर के श्रोता टोनी बोरकर, ललिता बोरकर की ये फरमाइश थी। रामनगर जिला गुना के हमारे श्रोता ज्योति प्रजापति, नरेश प्रजापति, सार्थक प्रजापति और पालदा नाका इंदौर के हमारे श्रोता हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी की फरमाइश हमने आपको सुनवाई। और इसी गीत को सुनना चाहते थे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ोड़ा करेली बाग के हमारे श्रोता हर्ष, राधे, पारस, पूजा, रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी। और रेलवे कॉलोनी डी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा पंचारी बबलू जिया।

अशी, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष जाधव का, और ये हमारे श्रोता हैं आरुष आर कम्मत, इन्होंने कोची केरल से ये फरमाइश भेजी थी।

प्रबोधचंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाटांड धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने, और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने, और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना। नगमा निगार हसरत जयपुरी, मौसकार शंकर जयकिशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्तारेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और नोखिलाल वर्मा की फरमाइश थी।

फिल्म जंगली में आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस गीत की फरमाइश भेजी जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, जितेंद्र वाघमारे, प्रतिभा वाघमारे, मितांश वाघमारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश थी। ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू ने इस गीत को पसंद किया। नूरे मुजस्सम रौमा, दिलावर हुसैन ट्रोमा, अजहरुद्दीन तमामुद्दीन ट्रोमा इनकी फरमाइश है, तहसील मालिया मियाना से। और परवेज अहमद, शहजाद अहमद, सरफराज अहमद ये हमारे श्रोता हैं काशीपुर खालसा के, और इस गीत को सुनना चाहते थे जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श सार्थ।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचन गांव जिला वर्धा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत।

और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, बबीता सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, अरुज जी और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए, भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
1: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।

0: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं।
1: अनाम भैया वॉलन सुनाओ ना।
0: हाँ, जरूर सुनाऊंगा रितु, अभी सुनाता हूं।

0: पूछो ना भैया।
1: पूछो।
0: ये वायलिन तुम कहां से लाए?
1: ये वायलिन
2: बेटे अनाम, कहां जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
2: अरे कुछ पहनकर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
2: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
2: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
2: इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
2: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ ये मिस्टर बत्रा कौन है?
2: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
3: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त

0: आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
1: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
2: अच्छा गया माँ।
1: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
2: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
1: क्यों?
2: माँ वो मैं श्रवण कुमार बना था, जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए

0: अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है तो क्या मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के मां बाप ने रोना शुरू किया, मेरे भी आंसू आ गए। सच, मुझे तुम याद आ गई मां।
1: बेटे, तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
2: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। मां उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें मां के इर्द गिर्द केंद्रित थीं, क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ मां थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की मां को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है,
3: अनाम, अनाम।
0: क्या बात है मां?
1: अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
0: लेकिन माँ, वो तो मुझे जानते ही नहीं।
1: जानते हैं, जानते हैं। मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
0: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
1: नहीं, अकेले ही जाना।
0: क्यों?
1: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
0: मगर क्यों माँ?
1: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा? आखिर रोल तो तुम्ही को करना है। तुम?
0: अच्छा नहीं रामा।
1: क्यों?
0: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
1: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
0: मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
1: क्यों?
0: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
1: ये बचपना छोड़ो अनाम, इस तरह नहीं कहा करते। मिस्टर पत्रा बहुत अच्छे आदमी हैं।
0: होंगे मगर।
1: अनाम।
0: माँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा। तुम चाहोगी तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस इतनी सी बात थी।
1: अनाम, अब तुम जवान हो, समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
0: मुझे दुख है माँ।
2: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेह भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें, अनाम को पहली बार माँ के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा, और अनाम सोच भी नहीं पाया कि मां को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान मां मौजूद रहती, वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
1: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है। बस बस यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना? हाँ, मुझे भी डर था, मगर अब ठीक है। बस बस ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बत्रा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं।

0: सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
0: आखिर क्यों?
2: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर।
0: अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छा आदमी जरूर है अनाम।
2: नहीं मां, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
0: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकालकर फेंक दो।
2: बुरा मत मानो मां, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर मां मेरे लिए संसार का अर्थ ही मां है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मां, तुम का मतलब होगा संसार को खो देना।
1: और मां अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
0: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूं, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपनी नापसंदगी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए।
1: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं हैं।
0: अनाम बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
2: न मां कुछ समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं?
1: अंतर्द्वंद्व चलता रहा, मां और बत्रा, बत्रा और मां। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमट कर मां के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती घर आता, मां कहती खाना खा, अनाम आता खाना खाता। मां कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा।
3: आ, आ, आ अनाम खाना खा, चल घर चल, जा बाजा बजा, बाजा बजा, जाकर सो सो जा, चल उठ उठकर हाथ मुंह धो, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर, चल भूल चल, नाटक कर
4: कर
3: नाटक कर, अच्छा अभिनय कर, चल तू गुस्सा तू हंस खुलकर हंस, बाजा बजा वायलिन बजा, बस बंद कर अब बंद कर, चल कहना मान आज्ञा मत डाल, खुश रह आंसू मत खुलकर रो, खुलकर रो, खुलकर रो, खुलकर रो।

0: इस तरह नहीं कहा करता। मिर्चक बच्चा बहुत अच्छा आदमी है। मिर्चक बच्चा बहुत अच्छा आदमी है। मिर्चक बच्चा बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, अकेले ही जाना
1: चाहिए।
0: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा। मेरे साथ चलने से क्या होगा? मैं तेरे लिए फॉल मिला। मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
2: अनाम
0: के लिए फॉल मिला।
2: अनाम, अनाम, क्या हुआ बेटे? क्या तुम डर गए थे? सपनों डरो मत बेटा, डरो मत।
1: हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना।

0: बस रितु,
1: और बजाओ ना नाम भैया।
0: बस रितु अब कल।
1: अच्छा अनाम भैया, आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी पता नहीं रितु, मेरी मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी तो है ना?
1: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं रितु।
1: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया मैं चलती हूँ।
2: अनाम, अनाम, अनाम।
0: हाँ?
2: ये वायलिन बंद करो, पहले मेरी बात सुनो।
0: सुन रहा हूँ।
2: मेरी बात टालोगे तो नहीं?
0: क्या बात?
2: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी?
2: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
2: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
3: अनाम की मां अब मिसेज बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन यह है कि अनाम महोदय बेचैन है। घर पर ताला लगाकर वे अपनी मां के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
2: अनाम दिन भर से कहां गायब थे?
0: बाहर था।
2: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूं कहां गायब थे?
0: शहर में घूम रहा था।
2: देखो अनाम, ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारागर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
0: बस करो माँ।
2: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
0: ठीक है।
2: क्या ठीक है?
0: आगे से ख्याल रखूंगा।
2: कहाँ जा रहे हो?
0: सोने के लिए।
2: खाना तो खा लो।
0: भूख नहीं है।
2: ठीक है जाओ।
0: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं। आखिर क्यों ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता मां?

0: मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है, अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था मां का।
1: अनाम खोया।

0: खोया रहता है, उदास और मूर्छित। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं, वो वहीं लौट जाना चाहता है। दिन दिन भर आवारा करती वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु, आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
1: मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
0: अब मैं और नहीं सह सकती, कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूं, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
1: जी हाँ जी हाँ, बलि ना होने दें, ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
0: आपको पता है अनाम घर छोड़ के चला गया, कल रात को यह नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए नाम को यहां से गए हुए, एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है, मैं बेचैन हूं। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली है, पास हो गया है।
1: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट घंटे पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन ऊब उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है, मां से जुदाई के 2 वर्ष, पल पल सदियों की तरह कटा। मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गई पता ही ना चला, है ना आश्चर्य की बात।
2: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल, बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर्य के बदलाव के रंग से दिन।
1: मिस्टर अनाम,
2: पता नहीं कौन मेरे अंदर मुझे आवाज देता है।
1: मिस्टर अनाम,
2: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं, दो एक बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे?
0: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती, मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
1: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
0: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
2: ये तुम्हारी भूल है मां, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
1: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
3: कहाँ है उत्तर?
1: कहाँ है उत्तर?
2: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
1: कहाँ है उत्तर?

0: अनाम भैया।
1: हाँ रितु।
0: वायलिन सुनाओ ना।
1: रितु आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगे, है ना?
0: हाँ हाँ चलो।

0: सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।
1: परेशान है, वो भी इसी के साथ है।
0: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है, उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के मां बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है, और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों से सुन रही है।
2: को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।

प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे दो दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था, मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक।

0: संपन्न होता है। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यह है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।

वायलिन वादक नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
6: जी,
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
6: जी, वैसे तो म्यूजिशियन बनना इटसेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है
0: जी।
6: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब
0: जी,
6: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहाँ कहा था उन्होंने, वो बात उनकी मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह,
6: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है। कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे। तो जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार, तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया
0: जी,
6: फिर तबला सिखाया, सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया। बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया
0: जी।
6: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे, तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था। यूनुस जी, ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
0: बाप रे बाप,
6: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
0: और उसमें खेलना।

0: और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं,
1: कुछ नहीं। 3 घंटे के रियाज, उसके बाद आधा घंटा ब्रेक, खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ। तो 13.5 घंटे मैं खड़े होकर प्रैक्टिस करता था।
0: ओहो,
1: बैठना भी नहीं, खड़े होके। वायलिन की एक पोजीशन होती है खड़े होने की, बस उससे हिलना नहीं। अगर पाँव थोड़ा सा हिल गया तो शाम को माँ कंप्लेंट करती थी कि आज इसका पाँव हिल गया।
0: ओहो,
1: तो ये तपस्या होती है
0: जी,
1: जो आज के युग में खत्म हो गई है। लेकिन संगीत की साधना जो है ना, वो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, उससे कहीं ऊपर है। आज हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, अगर आपने साधना कर ली संगीत की, तो आप समझिए कि आपने चारों धाम घूम ली।
0: बिल्कुल,
1: आप मक्का पहुंच गए, आप मंदिर पहुंच गए, आप अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की। संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है।
0: क्या बात है,
1: और उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक।
0: वाह,
1: उसकी साधना है।
0: बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।
1: परमेश्वर। तो यहाँ से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई और 1964 में पहला सोलो बजाया मौसा साहब के लिए।
0: जी जी,
1: मुझे फिल्म याद नहीं
0: जी,
1: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
0: बड़ी बात होती
1: है, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू कवाल जो थे उन्होंने दी
0: जी।
1: और वहां से शुरू हुआ सिलसिला, तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफी काम करता रहा। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है।
0: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में,
1: तमाम
0: प्रदेशों में,
1: कोई भी भाषा हो, अगर फिल्म बनी है
0: जी
1: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहां के म्यूजिक डायरेक्टर जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
0: साउथ हो,
1: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो। तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15-20 हजार गाने तो मामूली बात है।
0: बाप रे बाप रे बाप, एक जीवन काल में इतना काम,
1: इतना काम।
0: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
1: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था।
0: वाह वाह,
1: और 17,000 रुपए का घर था।
0: क्या बात है।
1: तो पहला घर अपना
0: किस इलाके में था?
1: खार में।
0: जी जी,
1: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग
0: जी।
1: तो वो पहला घर था 17,000 रुपए का, 17,000 रुपए में शायद मुझे लगता है 7 या 8 हजार रुपए कर्जा था।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: आधा कर्जा था।
1: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि
0: काम तो कर ही रहे थे।
1: तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए
0: जी।
1: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
0: जी जी जी,
1: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया
0: जी।
1: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे, तो लड़का अरेंजर बन गया
0: जी।
1: अरेंजमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे, तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक एक्टरी है।
0: बिल्कुल,
1: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
0: म्यूजिक डायरेक्टर,
1: इस इंडस्ट्री में म्यूजिक एक्टर है। खैर वो मैं आगे बताऊंगा आपको। हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
0: जी,
1: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे
0: जी। ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई हैं, लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है, और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का, जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
1: अमर हो गए जी, बिल्कुल, ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र

0: खयान साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगल जैक्सन, इनके पास हमेशा एक एवेंजर रहा है।
1: जी
0: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए एरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े एरेंजर जैसे सेवेस्टिन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे। तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मुरारी, आर डी बर्मन किया, एस डी बर्मन साहब किया,
1: जी
0: बहुत सारे उस टाइम के जो म्यूजिक एक्टर थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे,
1: नोटेशंस।
0: नोटेशन लिखना। टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव समबडी जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले। तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
1: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसकी नोटेशंस।
0: नोटेशन और उसकी नॉलेज होना
1: जी,
0: वो बहुत जरूरी
1: और
0: है।
1: वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो
0: जी
1: में,
0: जी
1: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
0: जी
1: बजेगा।
0: मोस्ट प्रॉब्ली 99% यही
1: जी
0: करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है।
1: जी
0: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया। मदन जी आपको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक है, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके।
1: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो।
0: वो चाहे बदल भी सकते हैं क्योंकि ही इज दी सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन?
1: अरेंजर है।
0: मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके साथ, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए। मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहां पे,
1: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक जी,
0: सोनिक जी,
1: सोनिक ओमी की
0: सोनिक
1: जोड़ी
0: ओमी।
1: थी।
0: हाँ, सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब। और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो
1: जी
0: ब्लाइंड थे
1: जी
0: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
1: बाबा,
0: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं भी लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था,
1: जी
0: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था।
1: हाँ
0: तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, बोले हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद, इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया। तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा राज क्या था, तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था। उन्होंने बताया पूरा सीन, 1.5 मिनट का पीस था, मुझे आज भी याद है। बोले नहीं राज, तुम कहीं मिस कर रहे हो,
1: गजब।
0: एक जगह ऐसी थी जहां पे वो हीरो चला था और टक्कर के पांव की आवाज थी, वो तुमने
1: वाह,
0: शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी करके आओ। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था।
1: ये मेमोरी
0: ये
1: सोनिक जी की,
0: मेमोरी, क्योंकि
1: गजब।
0: ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा, तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटेस्टिक अरेंजर, फैंटेस्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजल रूप रंग ही चेंज कर दिया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज टोटली कम्पोज बाई मास्टर जी। हाँ, मदन साहब थे वहां पे, हमने बजाया बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक। सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ, सुनो एक दफा। सुना ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है? जी यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज के म्यूजिक कैसा लगेगा वहां पे। ओके टेक करो,
1: क्या बात है।
0: तो म्यूजिक एंड अरेंजर की जो कॉम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी,
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया? प्रशांत साहब ने, ये मैं किया मदन साहब ने, ये शंकर जयकिशन, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे होते हैं
1: जी जी जी
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए। सिंगर्स का तो नाम आता है पर म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता। हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक एक्टर सो, वो अलग बात है। अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने एक गाना बनाया
1: जी,
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया। मैं जब तक गाना नहीं लिखता, गाना मेरा नहीं होता।
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं?
0: मैं अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का
1: जी,
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया।
1: अच्छा,
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ।
1: ओके,
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, यहाँ फ्लूट, यहाँ सरोद, यहाँ जो भी है जो भी है।
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट का?
0: ये मेरी डिसाइड है
1: जी,
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है। और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहां पे हूँ। जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा। अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था
1: जी,
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाई मी, म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर।
1: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं, आज शाम होने आई में
0: जी,
1: हॉर्न की आवाज आती
0: जी,
1: है,

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी।
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट।
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी।
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी।
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ है
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं सुन।
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के साथ,
0: शंकर जयकिशन के नए साहब के साथ और सबके साथ, बसंत देसाई साहब के साथ
1: जी।
0: फिर पाटे जी थे जिन्होंने काम किया कल्याण जी के साथ, बासु मुरारी आर डी बर्मन के साथ काम किया, एस डी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: उनके स्टाइल को फॉलो किया
1: जी जी।
0: मैंने लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को, वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भजवाए।
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है, तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मीनारायण प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम लोगों
0: भी उन्होंने काम किया। क्या काम किया उन्होंने एज अरेंजर, उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर, उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनका मैंने काम भी किया, तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है जी। सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ, बहुत साल, बहुत
1: लंबा साथ है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी। वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते
1: जी जी।
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया।
1: अरे,
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था
1: जी जी,
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,
0: तो हालात कुछ ऐसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ, सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था। हाँ। मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था, 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम उनके साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनका। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरिजेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी।

0: मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से,
1: वाह वाह,
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए मुंबई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहे, जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे। तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ के आया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया
1: जी।
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे।
1: अच्छा,
0: कार में? हाँ
1: जी,
0: 500 मीटर दूर थे। मैं यहाँ, मैं भी कार में था। तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया सुबह 6 बजे। बोले, मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुंचा। मैं कहा, मास्टर जी क्या हुआ? बोलते, यार उत्तम बैठ यार,

0: सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मेरा क्या हुआ कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर, प्लीज वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था?
0: ये मुझे याद नहीं,
1: अरे
0: लेकिन लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया,
1: जी
0: तो
1: जी
0: बोलती ये तो ठीक है। तो पहला म्यूजिक सुनाओ, फर्स्ट म्यूजिक सुनाया, बोलते ये भी ठीक है, अपने आप ही बोल रहे हैं ये भी ठीक
1: हाँ
0: है। फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया, उत्तम यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: मैं
1: बाप
0: क्या
1: रे,
0: हुआ मास्टर जी? बोले ये जो तुम 4 बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के हैं।
1: अरे बाप रे बाप।
0: मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना, लेकिन ये धनीराम जी के 4 नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये 4 नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया, मैं कहा ये, और उन्होंने वो चेंज किया।
1: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी
0: देखिए
1: रहे।
0: आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक्टर है,
1: जी
0: सबसे
1: जी
0: बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है।
1: और ये कॉपी नहीं कर रहे हैं,
0: ये
1: इसके लिए
0: कॉपी,
1: परेशान
0: किसी की
1: रहे।
0: कॉपी हो गई गलती से तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनीराम जी का था।
1: बाप रे,
0: फिर उन्होंने वो 4 बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे, और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया। दूसरे दिन रिकॉर्डिंग, कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं,
1: जी
0: लेकिन ये इंसिडेंट था।
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की एक
0: ईमानदारी के
1: बहुत ही अद्भुत घटना है। उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया है,
0: जी
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था, लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो एज ए रिजर्व के ही बुलाया था उन्होंने,
1: अच्छा
0: हाँ, लेकिन हो नहीं सका।
1: जी, सी रामचंद्र के साथ
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत, और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे।
1: जी।
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता। मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी, डैडी
1: मोपेट जी,
0: मोपेट डैडी ने 500 रुपए की या 450 रुपए की से मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था,
1: अच्छा
0: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली,
1: हाँ,
0: हेराल्ड गाड़ी थी, तो
1: हेराल्ड
0: जोर से निकल गई, तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मेरे कहा, तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना,
1: गजब।
0: तो मुझे रोका। मैं कहा अन्ना आप कहाँ? मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहाँ बाइक में जा रहे? मैं कहा अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे। ये जो आशीर्वाद है,
1: जी
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह
0: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप,
1: जी, उसके
0: आशीर्वाद
1: काबिल
0: आपको
1: होना पड़ता
0: लेना
1: है
0: पड़ता है,
1: जी।
0: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही है बहुत अच्छी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब, मैंने शुरू इनके साथ किया
1: जी
0: और इनके जाने तक मैं इनके साथ था।
1: क्या बात है
0: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया,
1: जी, और
0: लेकिन उनके
1: लगातार साथ रहा
0: लगातार साथ रहा, जब तक वो नहीं गए,
1: जी
0: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ था।
1: जी जी जी
0: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: से मुझे ये बताएं कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की पर पंचम की बात रह गई है, और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है
1: ऑलमोस्ट 25 साल।
0: जी जी जी, कुछ यादें बांटी है।
1: पंचम जी के साथ जहाँ काम शुरू किया मुझे लगता है वो भूत बंगला का बैकग्राउंड था।
0: ओहो हो, वो तो बहुत ही करामती बैकग्राउंड है भाई।
1: हाँ, वो 65 का है शायद वो।
0: जी जी, महमूद की फिल्म।
1: तो वहाँ से मैंने एज ए म्यूजिशियन उनके साथ शुरू किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मैं उनका सोलो वायलिनिस्ट हो गया।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: फिर उनकी वायलिन का जो सेक्शन है वो पूरा मैं लीडर था। पहले मैं बजाता था, मैं सेट करता था, फिर सब लोग बजाते थे। तो मरोड़ जी आके रिहर्सल करते थे 9:30 बजे। तो 9:15 बजे के करीब हम लोग सेट करते थे और चलता रहा काम, चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो तो, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरि जी फ्लूट हो गए,
0: मनोहरी दादा
1: की फ्लूट हो गए,
0: सेक्सोफोन
1: हो गए, चलो सोलो बजाना तो बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया,
0: मारुति बजाते थे।
1: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे
0: जी,
1: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और 9 रत्न कौन थे
0: जी?
1: मनोहरी जी
0: 1,
1: बासु जी
0: 2,
1: के भूपी जी
0: 3,
1: उसके बाद भानु
0: हाँ
1: 4, मारुति
0: 5,
1: देवीचंद
0: 6,
1: अमरुत
0: 7,
1: होमी मुल्ला
0: 8,
1: और 1 चंद्रकांत
0: 9। गजब गजब।
1: ये 9 लोग उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे।
0: ये सब हीरे थे, नगीने थे।
1: और इसमें कई लोग तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना, रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
0: गजब गजब।
1: चंद्रकांत हो गया,
0: पूरी टोली का
1: काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा जाता नहीं था उनके रिहर्सल रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
0: जी
1: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं,
0: वाह वाह वाह,
1: खाना खाते हैं।
0: ऐसी सुपर क्रिएटिव। शान फिल्म के गाने में यमा यमा में आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके बारे में बताइए।
1: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब हम तो रोज ही बजाते रहते थे, बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया। बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर।
0: क्या बात है?
1: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, और इसको इजिप्शियन स्टाइल बोलते हैं।
0: जी जी,
1: तो सुन लीजिए आप
0: जरूर।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है

0: पर मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
1: अरे
0: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था। मैं केबीएन, केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं, हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था
1: जी
0: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती कर दी केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन, कोरोस ने गलती कर दी केबीएन। तो ये केबीएन कुछ 4-5 महीने से चल रहा,
1: एक जुमला बन गया
0: एक
1: था।
0: जुमला बन गया था। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो एक पीछे से कि वायलिन वाले की गलती हो गई और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहाँ रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हुआ तो मैं खड़ा हो गया। पंच जी मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ केवीएन केवीएन केवीएन, आशा जी की गलती हुई थी केवीएन, गोपी जी की गलती हुई थी केवीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी तो आप इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस। अरे उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था,
1: क्या बात है,
0: ही लाइक ए फ्रेंड एंड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
1: वाह।
0: फिर मैंने कहा केबीएन केबीएन। ये सब लोग, सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े कि वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती।
1: जी।
0: तो ये सोलोस जो है वो तो है, अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा, फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी।
1: जी, आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
0: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए ले जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर,
1: हाँ,
0: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
1: जलपरी वाला।
0: वायलिन सोलो का पीस था
1: अच्छा
0: सागर फिल्म,
1: जी,
0: तो जो वो कमल हासन बजाता है,
1: अच्छा, वो जी।
0: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है,
1: हाँ
0: ये हमको पिक्चर में दिखाना है।
1: जी।
0: मैं बड़ा परेशान हो गया, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये चलो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे,
1: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच।
0: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते,
1: जी
0: कितना भी मारोगे टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है, ऐसे
1: हाँ
0: नहीं टूटते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे,
1: जी।
0: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहां खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी आशा जी वगैरह सब वहां उसी चैम्बर, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई कि उत्तम ये यहां से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस, तो ठीक है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू ट्रंक करके साइन दे, जैसे ये ऐसे
1: स्नैप आ
0: तू
1: जाए।
0: हाथ से करना,
1: जी
0: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये वायलिन है ना,
1: जी
0: अभी
1: हाँ
0: ये साउंड है,
1: जी
0: ये चाहिए, तार टूट गई,
1: हाँ।
0: तो ये 2-3 रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की, तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है
1: हाँ।
0: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
1: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
0: नहीं, वो पीस अब नहीं बज सकता।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कहा यार क्या बात है। तो मैं वेट कर रहा था पंचम के, पंचम आए तो मैं पूछूं। तो पंचम जी आए तो मैं कहा पंचम दा ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार। बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बना तब मुझे समझ में आया कि ओ

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
4: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
4: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
5: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
4: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

फूलों की खुशबू में तेरा ही सुरूर अच्छा लगता है, तेरी आवाज में डूबा ये नूर अच्छा लगता है, तू बोलती है तो लफ्जों में बहारें जागती हैं, तेरे लहजे का ये मीठा दस्तूर अच्छा लगता है, हवा भी रुक के सुनती है तेरी आवाज की खुशबू, तेरी बातों का दिल पर ये फितूर अच्छा लगता है, तेरी आवाज जब छेड़े कोई भूली हुई गजल, हर एक नगमे में तेरा ये गुरूर अच्छा लगता है।

मेरी हर सांस में खुशबू तेरी ही महकती है। तेरी नजर जो कभी मेरी नजर से मिलती है, वक्त कुछ पल के लिए यूं ही ठहर सा जाता है। तेरे कदमों की आहट जब सुनाई देती है, दिल की धड़कन में कोई गीत बहने लगता है।

में कुछ और खुशनुमा रहता है। तेरी बातों में जो ठहराव है वो क्या कहिए, दिल को हर हाल में संभाले रहता है। तेरे होने से मुकम्मल सी लगती है दुनिया, वरना इस दिल में कहां कोई तेरे अलावा रहता है। मैंने मांगा ही नहीं और कोई ख्वाब कभी, तेरा चेहरा ही मेरी चाहत का नजारा रहता है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। तेरी हंसी छूती है जब मेरे ख्यालों को, दिल मेरा फूल सा खिला रहता है। तेरी आवाज का असर कुछ ऐसा है मुझ पर, दूर रहकर भी तू करीब सा रहता है। तेरे खामोशी में भी सुनता हूँ तेरी बातें, तेरा एहसास मुझ में समाया रहता है। तेरे आने की खबर भर से महक उठती है शाम मेरी, जैसे मौसम कोई खुशगवार रहता है। तेरे होने से सुकून मिलता है इस दिल को, तेरा ख्याल हर लम्हा मुझे थामे रहता है।
1: हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना हो।

आंखों का असर किस तरह बयान करूं? एक नजर थी मगर सदियों की तलाश ही मंजिल थी। तू मिला तो मुझे खुद से भी मोहब्बत होने लगी, तेरे आने से मेरे होने की मुझे वजह मिली। तेरे बिन भी तेरा एहसास मेरे साथ रहा, जैसे वीरान मकामे कोई रोशनी की खिड़की थी। हमने चाहा भी नहीं इश्क हो इतना गहरा, फिर भी इस दिल में तेरी चाहत की बेकरारी थी।

जो चुपचाप मेरे सामने बैठा रहा, उस खामोशी में भी एक मीठी सी शरारत थी। अब न मंजिल की तमन्ना न सफर की फिक्र रही, तेरा हाथ साथ हो हर घड़ी, दिल को बस इतनी ही चाहत थी। न कोई वादा मांगा न कोई कसम तुझसे, बस तेरे साथ की ख्वाहिश ही मेरी इबादत थी। अब जो तू साथ है तो और क्या मांगू मैं, मेरी हर धड़कन में बस तेरी ही मोहब्बत है।

0: नजर से जो गुजरा तो ख्वाब हो गया, ये दिल भी तेरे इश्क में बेहिसाब हो गया। तेरे कदमों की आहट ने छुआ जब दिल को, सूना सूना सा मेरा घर भी गुलाब हो गया। तेरी हंसी ने मेरी शाम को सवारा यूं, जैसे वीरान फलक पर कोई आफताब हो गया। मेरे ख्याल की बारिश जो बरसी रात भर, हर एक जख्म मेरे दिल का लाजवाब हो गया। तेरे साथ जो गुजरा वो पल ठहर सा गया, वक्त जैसे कोई खूबसूरत किताब हो गया।
1: कहां से लाई हो जान।

अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

कार्यक्रम ताराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कुमार सानू की आवाज में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का और फिल्म का नाम है सूर्य।

लीजिए सुनिए अगला गीत हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत संगीत है रविंद्र जैन का और फिल्म का नाम है अखियों के झरोकों से।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया गए रंगून, पिया है महासतैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: समीर का लिखा गीत सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत है नदीम श्रावण का। फिल्म का नाम है जमाना दीवाना।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है, मुझे पता भी नहीं था कि वो जगह कौन सी है। दरवाजा खोलता हूँ तो किसी धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक।

0: विशाल चतुर्वेदी
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में। नख्मा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है मंजिल

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीतकार है विट्ठल भाई पटेल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है बॉबी।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही लम्हों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला

0: ଆକାଶବାଣୀର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡିବା ପାଇଁ।
1: ଆମର ଡେଜର୍ଟ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାମ୍ପିଅନ ଆସିଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
2: ବିଲ୍ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆସିଯିବ ନା।
1: କଣ ହଉଛି?
3: ବିଲ୍ ହଉଛି,
1: ଚାଲ ତୁ କାର୍ଡ ଦେ, ପିନ୍ ଦେ।
4: आरबीआई कहे जे निजर पिन ओटीपी सीवीवी किंबा इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड कहा को दियंतु नहीं। ऑनलाइन बैंकिंग केवल निजर ही कंप्यूटर मोबाइल एवं सिक्योर नेटवर्क द्वारा करंतु। हां एटा खाइबारो चैंपियनशिप थिला ना कोनो। आरबीआई कहे सचेत हुंतु सतर्क रहंतु।
5: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें।

0: मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रु मु पूरा मुक्ति।
1: सतरे भाई?
0: हाँ भाई, मात्र 1875 टंका रे। पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नाही।
1: आज्ञा हाँ, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु। मासक मास विद्युत बिल बढ़िबारे लागिछि, भारी असुविधा हेलाणी।
2: हां जेहले करबा कोन, घरे नाना काम रहुछि, गरम भी संभाली होउनी।
3: मामा कोन हैला, इते चिंता रे काहे कि अछो?
1: किछि नाइ लो मा, ए करंट बिल कथा भाबुथिली। आउ कह, मो मामार पढापढी केमिति चलिछि?
3: भलो चलिछि बापा, आज स्कूल रे हम सर पीएम सूर्य घर योजना विषय कहुथिले, घरे सोलर पैनल लगाइले प्रति मास रे 300 यूनिट पर्यंत विद्युत बिल बचाइ परिबा, आ सरकार एथिरे 3 किलो वाट पै 1,38,000 टंका रे सब्सिडी मध्ये दउछंती।
2: हां सते, लखे रु अधिक सब्सिडी?
3: हां मामा, संचय भी सुविधा भी।
1: आसुनो 1800345718 किंबा 1912 रे कॉल करी ए योजना विषय रे अधिक बुझिबा।
4: प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता, आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंता रो मुक्ति, पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे। आज्ञा हां, मात्र 1875 टंका रे निजो छात उपरे सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु। आज ही 1800345678 किंबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।
5: आज्ञा कथा रे अछि, कालर बसये जगत, प्राणीए कालर आयत्त। प्राणी कहिले एई मणिष प्राणीटिकु काल अधिक बस करि रखिछि, ताकु टाणी घुसारी नै चालिछि आगुकु आगुकु, निज इच्छारे अटकिबार जो नाही मणिषर। एमिति कालर इंगितरे आगु आगु मणिष साउंटी चालिछि केते नुआ नुआ रीतिरिवाज चलनी चातुरी, तारि भितरे हजै पकौछि किछि किछि पुरुणा चलनीर आदब कायदा, केउटाकु बा अदरकारी मने करि पकेई दौछि सभ्यतार आलीमालिका डबा भितरे। आज मणिषक मिलिछि हालुहाय सभ्यता, याकु आपणेला दिनरु ओडियाए हजै बसिलेणि गोटे अति असरदार आउ आदरर अभ्यास खंडिकासकु, तबे सेटा संपूर्ण हजि जाइछि बोली कहिबा ठीक हेबो नै। ओडियांकर रसिकामी थिबा जाय जत्र तत्र खंडिकास तार करामति देखै चालिथिबो, यहा निश्चित। असल कासकु त केही भल पांति नै, ज्योतिष गणना अनुसारे जनक उपरे अशुभ ग्रहर वक्र दृष्टि पड़िले जाय काश धरे, काशग्रस्त लोकटिकु मानहानि प्राणपीड़ा धनक्षय एमिति त्रिविध विपर्ययर सम्मुखीन हेबाकु पड़े। एणु असल काशकु समस्ते नमस्ते नमस्ते करंती। काश धरिबा क्षणी वैद्य पाखकु जाय तार दमनर व्यवस्था करंती। केवल सेतक नुहे, चोरी विद्यारे काश अत्यंत विघ्नकारक, गुप्त कारबार करुथबा लोकर काशकु भारी भय, कारण काश घड़िके घर बुड़ाई पाणी आंठुए करि पकाए। एहा अति विचित्र जे काशकु एमिति समस्ते असुख पाउथला बेले खंडी काशकु मणिष अति सरागरे सौकरे आपणा भितरु उद्यम करि बाहर करंती। एहा उभय स्रष्टा ओ श्रुतांकर आदर पाई आसीछि जुग जुग धरि। खंडी काशर कारबार रामायण महाभारत जुगरु, सीता स्वयंवर सभारे राम शिवधन भांगिबाकु आसिबा क्षणी सखीमाने खंडिकाश मारी सीतांकु सिहरित करि पकाइथिले। लंका दरबारे हनुमानर खंडिकाश शुणि रावण कुआडे कानकु पैता टेकि देइथिले। महाभारतरे श्रीकृष्ण खंडिकाश मारी अर्जुनंकु युद्ध परिचालनार इंगित देउथिले। खंडिकाश व्यवहार करि पंचपति पंचपाण्डव द्रौपदीक सहित संपर्क करुले जहाद्वारा अघटन घटुन थिला। देवर्षि नारद खंडिकाशे कुआडे देवदानव आखिरु निद हजि जाउथिला। भागवतर गोपलीला को एक खंडिकाशर लीला कहजिबो। यहा व्यतीत पुराणर सुभद्रा हरण, चंद्रावती हरण आदि सबु उपाख्यान एक खंडिकाशर करामती। केवल सेतक नुहे, स्वाधीनता संग्राम विप्लवी माने कुआडे गोपन खंडिकाश मारी मामला साफ करुथिले। एणु खंडिकाशर इतिहास भी भारी पुरुणा। केउ मरहटी कालरु ओडिया घरर मुरबी पणियार संतक थिला खंडिकाश। ओडिया जातिटा मुरबी को भारी माने, मुरबी को मानु नथिबा मणिषटा बेमुरबा। बेमुरबा मणिष मणिष नुहे कि मुरबी नथिबा घर घर नुहे। एमितिकी निजे गजपति महाराजा कालिया ठाकुर को मुरबी पणरे रखि आपणे राउतटीए होई शासन चलाउथिले। खंडिकाश थिला घर मुरबीर अहंकारर प्रतीक। घरे मुरबी नथिला बेले पिला छुआ बहु भुआसुणी टिके बेपरुआ होई जांती। बाहरु घरकु पशु पशु मुरबी महा

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य

0: अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
2: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार

0: उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
1: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
1: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
3: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
1: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरुमध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी।

0: भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
3: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
2: Citing the Quad as an example, Dr. Jaishankar said it demonstrates cooperation among middle powers with an established major power.
3: Today in a maritime space, in the Indo-Pacific space, we have Quad as an example of, I would say, emerging middle

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मुकेश की आवाज में, गीतकार है इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है उपासना।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है प्रोफेसर।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश की आवाज में, नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैलेन्द्र।

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा।

0: राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक गीत।
1: बरसात में

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

के गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

0: शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी।
1: सब कुछ सी

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: बदल ही जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: 2026 आईजी नगोया।
1: नमस्कार, आईची नागोया में एशियन गेम्स 2026 का समापन हो चुका है। यहाँ से एशियाई खेलों का ध्वज अब कतर की राजधानी दोहा के लिए निकल चुका है, जहाँ चार साल बाद 2030 में एक बार फिर से पदकों के लिए गदर मचेगा और एशियाई देशों के धुरंधर खिलाड़ी देश के लिए एक पदक जीतने की चाह में अपने हुनर का एक एक कतरा झोंक देंगे। 20वें एशियाई खेलों की बात करें तो भारत के लिहाज से प्रदर्शन मिला जुला रहा। ओवरऑल पदकों की संख्या हांगझू के मुकाबले भले ही कम हुई, लेकिन हम अपना चौथा स्थान कायम रखने में सफल रहे। इस बार जो भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, उनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। पिछले एशियाई खेलों में हमारे पदकों की संख्या 28 गोल्ड समेत कुल 106 थी। इस बार पदकों की संख्या कम होने की वजह पिछली बार के मुकाबले छोटा दल और कुछ प्रमुख खेलों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप न होना रहा। हालांकि कुछ ऐसे खेल रहे जिनमें हमारे मैदान के योद्धाओं ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। खासकर भारत की बेटियों ने इस बार कमाल कर दिया। अगर हम पदक तालिका पर गौर करते हैं तो हमने 11 स्वर्ण लड़कियों के इवेंट में हासिल किए, जबकि 7 गोल्ड लड़कों की स्पर्धाओं में रहे, 3 गोल्ड मिक्स इवेंट में आए। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय दल ने किन किन खेलों में कौन सा पदक जीता और हांगझू एशियन गेम्स के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा। शुरुआत ट्रैक एंड फील्ड के खेल एथलेटिक्स से करते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा दल उतरा था और पदक की भी ढेर सारी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद खरी नहीं उतर सकी। इस बार एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 24 पदक जीते। पदकों की संख्या तो पिछले एशियन गेम्स के 29 पदकों के आसपास ही रही, लेकिन गोल्ड मेडल में भारी गिरावट आई। पिछली बार हमने 6 गोल्ड जीते थे। पदकों की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग में भी हमारी आस पूरी नहीं हुई। निशाना साधने के खेल में इस बार हमने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते। 19वें एशियाई खेलों में हमारे खाते में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य समेत 22 पदक आए थे। यहाँ भी सोने के तमगे की संख्या में 4 की कमी आई। बैडमिंटन, टेनिस और घुड़सवारी ने खासा निराश किया। पिछली बार स्क्वाश में हमारे 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। इस बार कुल पदकों की संख्या तो 5 रही, लेकिन उसमें सोने का कोई तमगा शामिल नहीं रहा। 2 रजत और 3 कांस्य पदक भारत के खाते में आए। बैडमिंटन ने भी निराश किया। 2022 के एशियन गेम्स के 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक की तुलना में 2026 में सिर्फ 1 कांस्य पदक खाते में।

0: टेनिस में तो पदकों का खाता तक नहीं खुला। पिछली बार एक गोल्ड और एक सिल्वर समेत दो पदक आए थे। घुड़सवारी में भी अकाउंट ओपन नहीं हो सका। हांगझू में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल आया था। दूसरी तरफ कुछ खेलों में हमारे सितारे पिछली बार से ज्यादा चमके। बॉक्सिंग में भरोसा तो था, लेकिन रिंग के उस्तादों ने उन उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। जापान में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक आए, जबकि चीन में 1 रजत और 3 कांस्य पदक ही भारत के खाते में था। कुश्ती के अखाड़े में भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव दिखाए और पिछली बार के 1 रजत और 5 कांस्य पदकों को इस बार 2 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य में बदल दिया। कमाल तो ये भी हुआ कि ग्रीको रोमन शैली में भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद फाइनल में पहुंचा। नितेश शिवाच ने ये कमाल कर दिखाया। गोल्फ में न सिर्फ पदकों की संख्या पिछली बार के 1 रजत से बढ़कर 2 हो गई, बल्कि इनमें 1 सोना और 1 चांदी का मेडल भी शामिल रहा। खास बात तो ये भी रही कि प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारे धनुर्धरों ने पदकों की संख्या को कम नहीं होने दिया। इस बार भी 5 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता। खास बात ये रही कि तीरंदाजों ने न सिर्फ कंपाउंड टीम इवेंट में अपने पिछले 3 गोल्ड मेडल को कायम रखा, बल्कि रिकर्व में भी कमाल किया। महिला टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, 17 साल की कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत इवेंट में भी स्वर्णिम निशाना साधा। पुरुष टीम को रजत पदक मिला। वेट लिफ्टिंग में देश की बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू ने निराश नहीं किया। पिछली बार वजन उठाने के इस खेल में हमारा हाथ खाली रहा था, तो इस बार मीरा ने रजत देश के नाम किया। टीम इवेंट में भी हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। हॉकी के पुरुष वर्ग में न सिर्फ हमारी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाली एशिया की पहली टीम बनी, बल्कि महिला टीम तो उससे भी आगे निकल गई। झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में महिला टीम ने 44 साल बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि बेहद मजबूत चीन को हराकर लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी कटाया। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीमें अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में कामयाब रही। अपने पारंपरिक खेल कबड्डी के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हमारी बादशाहत कायम रही। दोनों ही वर्गों में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि कुछ अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर रहा। इन खेलों में हमने पिछली बार 17 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 10 तक सिमट गई। इस समय हमारे साथ भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया
0: मोना। 20वें एशियाई खेलों में एक समय हम पदकों की दौड़ में काफी पिछड़ रहे थे और लग रहा था कि भारत का पोजीशन 2022 के मुकाबले पीछे न रह जाए, लेकिन जब अंतिम मेडल टैली आई और हम फिर से चौथा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, तो एक खेल प्रशंसक, एक भारतीय और खेल पत्रकार के तौर पर आपने कितनी राहत महसूस की?
1: जी बिल्कुल, आखिर के 4-5 दिन में जो प्रदर्शन हुआ उसने काफी राहत की सांस महसूस कराई, क्योंकि पहले 10वें 11वें 12वें नंबर पर लगातार भारत रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम टॉप 10 में आ पाएंगे भी या नहीं। एक उम्मीद जरूर थी कि कुछ टीम गेम्स के मेडल आने बाकी थे, लेकिन फिर भी लगा था कि 5वां 6वां स्थान शायद रह जाएगा, लेकिन अंत में जो आखिरी मेडल गोल्ड आया उसमें हमने उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर फिर चौथा स्थान हासिल किया, तो ये जरूर राहत की बात रही। हालांकि पदकों की अगर हम बात करें तो पिछली बार सेंचुरी लगाई थी और इस बार 85 पर सिमट कर रह गए, तो वो थोड़ा चिंता का विषय रहा, लेकिन ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अलग अलग खेलों में इस बार पदक आए हैं, तो ये हम अगर सकारात्मक देखें तो ये हो सकता है।
0: तो मोना, पदकों की कुल संख्या का कम होने के पीछे वजह क्या रही और क्या सचमुच ये हमारे लिए चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से हमने 20 गोल्ड मेडल गवाए तो 13 नए गोल्ड मेडल जोड़े भी हैं, तो ये सकारात्मक पहलू भी तो हो सकता है।
1: जब भी हम किसी बहुराष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो जिन खेलों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसमें निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और एथलेटिक्स है, तो इन खेलों में हमारा पिछली बार जो प्रदर्शन था अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 गोल्ड मेडल थे, इस बार एक ही आया, तो काफी कुछ निराशा यहाँ रही, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का इनमें पलड़ा भारी रहता है, तो जो अपनी ताकत है उस पर हम नहीं खेल पाए, वहाँ निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई नए खेलों में हमने, जैसे रिकर्व आर्चरी में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ट्रैप शूटिंग में पदक आया, महिला हॉकी में 44 साल बाद पदक आया, तो ये कुछ अच्छे पहलू रहे। लेकिन नए खेलों में पदक जीतने के मायने ये नहीं है कि जो हमारे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल है उनमें हमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
0: हमारे पदकों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन हमें याद भी रखना होगा कि पिछली बार हमारे 700 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम गई थी, लेकिन इस बार उसके मुकाबले करीब करीब संख्या 200 कम थी, उसका भी कुछ असर हुआ है क्या?
1: नहीं, मुझे लगता है कि जो पदक उम्मीदें थी वो सारी ही थी इस कॉन्टिंजेंट में और

0: स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां पर उम्मीद नजर आती है पदकों की, भारतीय दल का हिस्सा वही खिलाड़ी होंगे और उसको देखते हुए लगता है कि जो रेशो रहा है वो जिनसे उम्मीद की जा रही थी, अगर वो मैदान पर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए तो वहां पर संख्या से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई लेना देना है।
1: मोना, हम जानते हैं कि हॉकी पर आपकी खास निगाह रहती है और भारतीय पुरुष टीम ने तो स्वर्ण का बचाव कर नया इतिहास ही लिखा है इस बार, और महिला टीम ने 44 साल बाद स्वर्ण जीतकर कमाल कर दिया है। दोनों टीमों के प्रदर्शन में इस बार क्या खास रहा?
0: देखिए, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी हमारी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस प्रतियोगिता में उतना जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो भी इतना नहीं था। अगर आपने ग्रुप मैचेस देखे हो तो बहुत बड़े बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज की। एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़ दिया जाए तो भारत को बहुत ज्यादा चुनौती का यहाँ सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन रहा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम का, 8वें स्थान पर रही थी, तो उस निराशा से उबरते हुए ये गोल्ड मेडल ने जरूर राहत का काम किया होगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पुरुष हॉकी के लिए खासतौर पे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब आगे के लिए हमें बड़ा सोचना होगा, लेकिन ये बात महिला हॉकी की अगर हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तब हमको गोल्ड मेडल मिला था, और यहाँ 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसे ठीक एक महीना पहले विश्व कप में 52 साल बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 5वां स्थान हासिल किया। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीधे लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटाया है। पिछली बार पेरिस में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टोक्यो हाई के बाद, तो ये सबसे बड़ी यहाँ राहत की बात है कि अब पूरे 2 साल महिला हॉकी टीम के पास है, और जिस तरीके से टीम की तैयारियां चल रही है, अगर हम ओलंपिक में पदक के दावेदारों में शामिल हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
1: तीरंदाजी में मोना हमने कमाल किया, पहले हमारी ताकत कंपाउंड इवेंट हुआ करती थी लेकिन इस बार तो रिकर्व में भी कमाल हुआ। हमारे धनुर्धरों की सफलता को लेकर आप कितनी खुश हैं और भविष्य का क्या संकेत मिलता है?
0: जो भारतीय टीम का पदक तालिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो मुझे लगता है तीरंदाजों ने ही शुरुआत की, और खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी कुमकुम मोहत की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस तरीके की परिपक्वता अपने खेल में दिखाई है, कोरिया की लेजेंडरी आर्चर को हराकर गोल्ड मेडल जीता, और जिस खिलाड़ी को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना आदर्श भी मानती है, और शूट ऑफ तक उनका एक मुकाबला गया था, जबरदस्त संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन देते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। 3 पदक उनकी झोली में गिरे हैं, और जब चयन हुआ था तीरंदाजी टीम का तो काफी सवाल उठे थे कि अनुभव पर युवाओं को तरजीह दी गई, लेकिन यहाँ पर कुमकुम की अगुवाई में रिकर्व टीम ने इतिहास रचा। और कंपाउंड आर्चरी की भी अगर हम बात करें तो ज्योति व्यक्तिगत स्पर्धा में भले ही कमाल नहीं कर पाई हो लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रदर्शन जबरदस्त किया और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला, तो तीरंदाजी में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन खेलों में देखने को मिला।
1: मोना, निशाना साधने की एक और खेल शूटिंग की बात करें तो वहां पर मेडल पिछले बार जितने नहीं आए, लेकिन नीरू ढांडा का प्रदर्शन, जो कि कोविड से जूझ रही थी, करियर समाप्त होने की तरफ था, लेकिन उन्होंने 2 गोल्ड पर निशाना साधा।
0: बिल्कुल, इसको कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। नीरू का मैं इंटरव्यू देख रही थी और कह रही थी कि मैं आई थी तो यही सोच के आई थी कि मुझे सिर्फ गोल्ड ही जीतना है, और उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ट्रैप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया, महिला निशानेबाज बनी, और किनान के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स में भी पदक जीता, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्वजवाहक भी रही वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का उनका प्रदर्शन जारी रहा तो शायद 2004 के बाद जो शॉटगन में भारत को एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद के रूप में वो उभर सकती है।
1: जी, और कुश्ती के मैट पर भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव पेंच दिखाया, 2 सोने का मेडल भी जीता। ये पारंपरिक खेल हमारे लिए ओलंपिक में भी पदक की एक बड़ी उम्मीद हमेशा से रहा है। पहलवानों के इस बार के प्रदर्शन ने आपको कितना प्रभावित किया?
0: खास तौर पे सुजीत कलकल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हारा हुआ एक तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल रहे, तो कुश्ती में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा। 2 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए और आगे उम्मीद यही रहेगी कि वहां से अच्छी खबरें ही सामने आए।
1: और खासकर ग्रीको रोमन शैली में भी सालों बाद हमारा कोई पहलवान फाइनल में पहुंचा, 2 मेडल भी आए। ये कुश्ती की पारंपरिक शैली नहीं है, फिर भी इस बात का संकेत तो मिलता है कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती पर भी काफी काम हो रहा है।
0: बिल्कुल, जब भी कुश्ती के मैट पे भारतीय उतरते हैं तो फ्री स्टाइल में ही माना जाता है कि वो हमारा एक मजबूत पक्ष है, लेकिन ग्रीको रोमन ने चाहे वो नितेश सिवाच हो चाहे सुनील कुमार हो, जिस तरह से भारत की झोली में पदक डाले तो अब लगता है कि आगे किसी भी खेलों में इस

0: दिल्ली से भी भारत को पदक की उम्मीद की जा सकती है।
1: मुक्केबाजी में भी इस बार एशियाई देशों ने हमारे बॉक्सर्स के पंचों के दम को देखा, 3 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में हमारी मुक्केबाजी क्या कमाल कर सकती है।
0: बिल्कुल, लवलीना बोरगोहेन ने जो शुरुआत की, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला, तो एक तरह से कहा जाए कमबैक ही रहा उनके लिए भी। परवीन हुड्डा ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अंकुश पंघाल, तो कुल मिलाकर 3 गोल्ड मेडल किसी भी खेल में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
1: क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल में दोनों वर्गों में हमारी टीम्स का गोल्ड मेडल, क्या ये साबित करता है कि फिलहाल इनमें से कम एशियाई स्तर पर तो हमारी कोई टक्कर नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं है। खासतौर पर अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, एक ही समय पर भारत की दो टीमें अलग अलग टूर्नामेंट खेल रही है, वहाँ सीरीज जीत रही है, यहाँ पे एशियन गेम्स, तो क्रिकेट में जो भारत की गहराई है उसका कोई मुकाबला नहीं और एशिया स्तर पर तो कोई चुनौती थी नहीं भारत के पास। कबड्डी में एक ईरान को छोड़कर किसी टीम से भारत को चुनौती मिलने की वैसे भी उम्मीद नहीं थी और भारतीयों ने उस पर खरे उतरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए।
1: एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में हमारी झोली में सबसे अधिक पदक आए थे। इस बार न सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदकों की संख्या कम हुई बल्कि गोल्ड मेडल में भी ड्रास्टिक गिरावट आई। एशियन स्तर पर यह प्रदर्शन हमारे लिए कितनी चिंता की बात
0: है? बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है क्योंकि पिछली बार 6 गोल्ड मेडल आए थे, इस बार एक ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है और इस तरह के इवेंट में जो एथलेटिक्स होता है वो उसको कहा जाता है रूह है उस आयोजन की, उस पूरे खेलों की रूह है और उसमें सबकी नजरें लगी होती है। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही नीरज चोपड़ा के न होने की वजह से काफी कुछ लग रहा था, रौनक कम हो गई है। डिफेंडिंग चैंपियन भी थे भाला फेंक में, लेकिन यहाँ निराशा हाथ लगी। अभी भाला फेंक की अगर हम बात करें तो यशवीर और रोहित ने 2 पदक भारत की झोली में डाले और काफी समय तक यशवीर आगे भी चल रहे थे, लग रहा था गोल्ड आएगा, लेकिन जो इस समय एक तूफान आया हुआ है श्रीलंका के पाथिरागे के नाम से, उन्होंने एक भाला ऐसा फेंका कि वो एक गोल्ड भारत के पास से निकल गया। फिर पूजा की अगर हम बात करें वो भी काफी समय तक आगे चल रही थी लेकिन आखिरी 2 प्रयास में वो भी चूक गई। मुरली श्रीशंकर हो, एनसी सोजन हो, सर्वेश कुशारे हो और तेजिंदर पाल सिंह तूर लगातार जिनका दबदबा रहा है वो भी चूके उनका गोल्ड जो है सिल्वर में, तो काफी जो गोल्ड है हमारे सिल्वर में चले गए। लेकिन रिले टीम की यहाँ तारीफ करनी होगी, महिलाओं की 4x400 मीटर, उसमें भी विथ्या रामराज की खासतौर पर, जिन्होंने लास्ट लैप में जिस तरीके से ओवरटेक किया है और भारत को गोल्ड दिलाया है, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग रहा पूरे एथलेटिक्स में प्रदर्शन में। लेकिन यहाँ जरूर निराशा रही कि 5 गोल्ड सीधे हाथ से निकल गए।
1: और गोल्फ की बात करना भी जरूरी है क्योंकि वहाँ भी महिला वर्ग में हमने इतिहास रचा है। जो प्रदर्शन रहा प्रणवी उर्स का, वो कैसे देखती हैं आप, कितनी बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं एशिया में?
0: देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें मेडल टैली तो महिलाओं ने ही बाजी मारी है इस बार स्वर्ण पदकों में। मुझे रियो ओलंपिक याद आ रहा है जब महिलाएं पदक लेकर आई थी, तो गोल्फ में भी आप प्रणवी उर्स का प्रदर्शन देखिए, शुरू से उन्होंने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और आखिर में पहली महिला बनी। कितनी ईमानदारी से लोगों ने सोचा होगा जब ये कंटिंजेंट रवाना हो रहा था कि गोल्फ में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, कम से कम हम लोगों ने, खेल पत्रकारों ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी और ये एक अनएक्सपेक्टेड गोल्ड भारत की झोली में आया है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टीम का भी, जिसमें अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी थी कि सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ से देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत अदिति अशोक से हुई थी जब उन्होंने ओलंपिक में 4th स्थान हासिल किया था और अभी महिलाओं ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है।
1: उन्हें स्क्वाश में भी मेडल तो आया लेकिन आपको लगता है कि उतना भरोसा पूरा हुआ जितने की उम्मीद थी?
0: स्क्वाश में गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की झोली में, लेकिन संभावनाएं जरूर जगी हैं, खासतौर पे अनहद सिंह ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं और भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद मानी जा रही है। उन्होंने पहली बार महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो ये एक अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए रहा।
1: साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे खेलों ने पूरी तरह से निराश किया, आप मानती हैं कि इन खेलों में काफी काम करने की जरूरत है?
0: देखिए, हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार होती है खेलों की, तो उसमें फोकस इस बार ये था कि उन खेलों पर भी ध्यान दिया जाए जिनमें पारंपरिक रूप से हम अच्छे पदक जीतने की हमारी उम्मीद नहीं होती है, जैसा चीन ने किया था बीजिंग ओलंपिक से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि इन खेलों में जिस तरह से निराशा सामने आई है हर वर्ग में, भारतीय फाइनल दौड़ में भी जगह नहीं बना पाए, शुरुआती दौर में ही बाहर होते गए, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
1: और एक अंतिम सवाल, सेलिंग, सेपक टेकरा, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल नई उम्मीद जगा गए जबकि घुड़सवारी जैसे कुछ खेलों ने निराश किया। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेल

0: भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें जगाने वाले रहे और किन खेलों में और ज्यादा मेहनत करने की तरफ इशारा कर गए?
1: बिल्कुल, आप देखिए सेलिंग में जिस तरह नेत्रा कुमारन काफी अनुभवी सेलर हैं और डिंगी महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में उन्होंने एक मेडल भारत को दिलाया जो पहला पदक है। जय मीना ने जैसे आपने बात की सॉफ्ट टेनिस की और पुरुषों की चौकड़ी ने सेपक टेकरा में भारत को पदक दिलाया। तो ये जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रॉड हुआ है, जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा चौड़ा हुआ है कि अलग अलग खेलों में हमें पदक मिले जरूर है लेकिन जो पारंपरिक हमारे खेल हैं उनमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो यहाँ पर ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक तरफ आपको ये सकारात्मक बात भी है कि आपने नए नए खेलों में प्रवेश किया, पदक को पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन जो हमारी ताकत है उस पर भी हमें पोडियम पे ही खड़े होना है, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता क्योंकि उसका सीधा असर आपकी मेडल टैली पर पड़ता है। आप देखिए टेनिस में 40 साल बाद एक भी पदक नहीं भारत को मिला, बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। तो बिल्कुल सारे हमारे धुरंधर बैडमिंटन टीम में थे लेकिन कोई पदक नहीं उसमें हाथ लगा। तो यहाँ बहुत निराशा है और इस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
0: मोना स्टूडियो में आने के लिए और हमसे एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
0: आईची नागोया में भारत का 85 पदकों का ये आंकड़ा जश्न मनाने के लिए काफी है लेकिन कहीं न कहीं आत्ममंथन का भी संकेत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है जिसका मतलब है कि हमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ उन खेलों में भी ग्रास रूट स्तर पर काम करना होगा जहां एशियाई स्तर पर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे हर खिलाड़ी का जोश और जज्बा ये कह रहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भारत की नींव बेहद मजबूत है। तो जीत का जश्न जारी रहे और खिलाड़ियों का ये कारवां यूं ही तिरंगा ऊंचा करता रहे। एशियन गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर हमारी स्पेशल कवरेज के अंतिम एपिसोड से कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर विशाल कुमार के साथ मुझे धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11 बजने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मित मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मित तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों

0: और परिवार के साथ संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद रिली करी प्रचार कलु राष्ट्रीय प्रसारण सभा दिल्ली रो आकाशवाणी बारिपदा स्टूडियो घड़ी समय वर्तमान राति 11:05। एथर आसंता काली आम केन्द्र प्रचार होबाकु थिबा केतेटी कार्यक्रम संपर्क में सूचना देउछु। आसंता काली सकाळ 6:05 रे प्रचार करिबु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना, सकाळ 7:00 रे कार्यक्रम सूचना, सकाळ 7:25 रे सूचना मूर्छनार कार्यक्रम परिक्रमा, गीतांजलि प्रचार करिबो सकाळ 8:15 रे एवं सकाळ 8:45 रे। दिन 12:00 रे चहला कार्यक्रम रे प्रचार करिबो ओडिसी कीर्तन, दिन 1:20 रे महिला महल, संध्या 5:30 रे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। संध्या 6:00 भक्ति गीत सुगम संगीत, संध्या 6:15 रे, राति 7:00 रे आदिवासी संगीत, राति 7:30 रे प्रचार करिबो चासवास, ओडिया चलचित्र गीत प्रचार करिबो राति 8:00 रे, राति 8:30 रे स्वास्थ्य संपद गीत अतीत प्रचार करिबो 8:40 रे, लोकगीत कार्यक्रम पाला प्रचार करिबो राति 10:00 रे, एकक चलचित्र क्रम हिंदी चलचित्र गीत प्रचार करिबो राति 10:30 रे। ए थिला आसंता काली आम केन्द्र प्रचार होबाकु थिबा केतेटी कार्यसूची। एटी शेष करुछु आजिर कार्यक्रम, पुणी आपण मानंकु अभिवादन जणाइबु आसंता काली प्रातः 5:55 रे। सेतेबेळ पर्यंत शुभरात्रि सह विदाई नौछु। जय हिंद।